0: का कर देती, पूरा जीवन इदम में लगा देती, यही अंतर है। अब इन बातों को स्वाध्याय में श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta
4: 6.
3: Thank you.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्। यू हैव टू फील मैत्री, दिस मित्रता, दिस मित्रता मीन्स फ्रेंडलीनेस, सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू हैव टू हैव ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ऑन द लिविंग बीइंग्स, सर्व प्राणिना, ऑन द लिविंग बीइंग्स विच आर एक्सपीरियंसिंग सुख संभोगापन्नेषु, विच आर एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, on them you have to have this relationship of friendliness.
1: Om Namah Shivaya. You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओ ओ ओ आदिगुरु शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी

भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया।

दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के अंतर्गत पांचवें श्लोक की व्याख्या है। शंकराचार्य कहते हैं, देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलाम्

0: नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। इस श्लोक में आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी यथार्थ तत्व के बारे में, कितने लोग भ्रांत हैं इस बात का उल्लेख करते हुए, और इनकी भ्रांति कब टूटेगी, कौन तोड़ेगा, भगवान दक्षिणामूर्ति गुरुमूर्ति भगवान दक्षिणामूर्ति शिव की जब कृपा होगी तभी इनकी भ्रांति टूटेगी, तब यथार्थ वस्तु का इनको बोध होगा, अन्यथा वास्तव में यथार्थ परमात्म तत्व का बोध नहीं हो रहा है और सभी भ्रांति के चलते अपनी ही अपनी वाद अपने अपने सिद्धांत का आलाप कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है। कौन कौन है इस प्रकार से परमात्मा के यथार्थ तत्व को न जानते हुए भ्रांति से अन्य वस्तु को यथार्थ तत्व मान रहे हैं? सबसे पहले देहात्मवादी चार्वाक सिद्धांत का संकेत किया है। सबसे पहले तो वो चार्वाक हैं, परमात्मा ने ही उनको जन्म दिया, परमात्मा ने ही उनको जीवन दिया, और उसी परमात्मा ने उनका मन दिया, बुद्धि दी, इंद्रियां दी, सारे साधनों से संपन्न बनाया, फिर भी उन साधनों का सदुपयोग न करके वे लोग वाक् चातुर्यता का प्रयोग करते हुए उस परमात्मा की स्मरण नहीं करते हैं, उसके प्रति उनकी बुद्धि नहीं जाती है, और स्वयं तो भ्रांत है ही हैं, अन्यथा को अन्यथा मान रहे हैं, साथ साथ ही अपनी संप्रदाय बढ़ाने के लिए अन्य को भी भ्रांत कर रहे हैं। इसलिए उनको उनके पीछे लगने वाले संख्या बहुत ज्यादा है। ये तब की बात नहीं है, आज भी, और आज तो और भी ज्यादा है उनकी मेजॉरिटी में उनके पीछे लगने वालों संप्रदाय, क्योंकि वे चार्वाक हैं, चार्वाक के जमाना है ये। सत्य एक तरफ होता है, कथन दूसरी तरफ होता है। ये तो जो जितने प्रबल तर्क और युक्ति से वाक् चातुर्यता से जो अपना पक्ष रख सकता है उसी का ही आज जमाना है, इसी को चार्वाक। आज सारा संसार चार्वाकियों का साम्राज्य भरा हुआ है। चार्वाक शब्द का दो व्युत्पत्ति किया, चारु वदति इति चारुवाक, बोलने में बड़ा चतुर है जो, अन्यथा नहीं लेना, कोई वकील होगा तो वो चार्वाक ही होगा है, इस अर्थ में, हाँ, इस व्युत्पत्ति से, अन्यथा नहीं लेना कोई वकील हो, क्योंकि उसका पैसा ही चार्वाक है, उसका बिजनेस ही चार्वाक है। वो तो बोलने में कुशल नहीं होगा, चतुर नहीं होगा, तब वो वकील हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सामने वाले की वाणी को वह इस तरह किल देना है कि आगे वह अर्थबोध करने की क्षमता न हो, अन्य युक्तियों को लाने की क्षमता से रहित हो जाए। हाँ, वाक किलम, वाक वाणी को किलने वाला, हाँ, किल दिया, हाँ, अब उसके बुद्धि से उसके वाणी से उसके तर्क को काटने की युक्तियां बाहर नहीं निकल सकती है, हाँ, और क्योंकि वो बहुत युक्ति से बोलना पड़ता है उसको, चारुवाक यानी सुनने में बिल्कुल सत्य लगे और सुनने वालों को बहुत अच्छा भी लगे। चारुवाक संसार तो उसी के पीछे है, इसी को वाक चातुर्य, इसी को चाटुकारिता भी बोलते हैं। बड़े के सामने छोटे लोग यही करते हैं, अरे आप तो साक्षात भगवान हैं, आपके आश्रय तो हम जी रहे हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे आश्रयदाता हैं, आप समस्त गुणों के खानी हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। मांगने वाला भी इस प्रकार के शब्द झड़ी लगाता है ना, जब तो सामने वाला व्यक्ति दिए बिना रहता ही नहीं है, उसके देने की इच्छा होती है, क्योंकि इस प्रकार के वह फ्रॉड शब्द झड़ी लगा रहा है फोकट में है। पहले के राजा लोग तो तनख्वाह देकर प्रशंसा करने के लिए आदमियों को नियुक्त करते थे, अब कम से कम वह इतने इतने शब्द प्रयोग कर रहा है तो एक रुपया तो दो, ज्यादा नहीं दस रुपया दो, आज तो एक रुपया का जमाने ही खत्म हो गया है, है ना? एक रुपया का तो जमाने ही खत्म हो गया। चार वाक, इस विश्व में सबसे स्थूल दर्शन है ये, बहुत ही स्थूल दर्शन, देहात्मवादी। चार वाक, चारवाक के आचार्य कौन है? चारवाक दर्शन के आचार्य प्रहलाद का पौत्र विरोचन, प्रहलाद का विरोचन है, नहीं पुत्र है, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, पौत्र तो बलि हो गया, पुत्र विरोचन है। बाप भगवान का परम भक्त और बेटा शरीर का परम भक्त, ले देखो कितना विपरीत है, देहात्मवादी बेटा हो गया, परमात्मवादी बाप हो गए। इसका कारण क्या है भाई, इतना फर्क क्यों पड़ गया? तो ये तो प्रहलाद जी को तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, सद्गुरु प्राप्त हो गया मां के गर्भ के अंदर ही, प्रहलाद जी को तो मां के गर्भ के अंदर ही गुरु प्राप्त हुआ है, और इसीलिए गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति, भले ही उनको नारद कहो तुम, हम लोग नारद कहते हैं भले ही, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने ही उनको उपदेश किया था, लेकिन नारद के रूप में ही साक्षात दक्षिणामूर्ति भगवान शिव ही प्रहलाद को तत्व का उपदेश करने के लिए वहां पहुंच गए हैं। इसलिए हमारी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के दृष्टि से जितने भी गुरु हैं सभी दक्षिणामूर्ति हैं, और जितने भी दक्षिणामूर्ति रूप गुरु मूर्ति हैं वो साक्षात शिव का ही स्वरूप हैं, शिव से भिन्न नहीं है, वो केवल उपाधि अलग अलग हो सकता है, अलग अलग उपाधियों में वही शिव, अलग अलग नाम अलग अलग रूप वही शिव, एक ही शिव गुरु मूर्ति के रूप में सबके सामने उपदेश करते हुए तत्व का ज्ञान देते हैं और भ्रांति का निवारण करते हैं। यहां उसी का स्मरण किया है, भ्रांतः वृषम्वादिना, ये सभी भ्रांत हैं, उनके भ्रांतियों का निवारण तो एकमात्र दक्षिणामूर्ति गुरु रूप दक्षिणामूर्ति कर सकते हैं। तो प्रहलाद जी को तो नारद जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए मां के गर्भ के अंदर रहते हुए ही, इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के वंशनाश करने के लिए हिरण्यकश्यपु की पत्नी को तयाधु को, जब प्रहलाद गर्भ में थे हरण करके ले जा रहा था, बीच में नारद जी पहुंच गए, कहा कि अरे भाई क्या कर रहे हो, ये तो स्त्री को कहां लेके जा रहा हो, बोले इसके वंशनाश करना चाहता हूं हिरण्यकश्यपु के, क्योंकि इसके पेट में हिरण्यकश्यपु का वंशज है, बीज है, और ये जन्म लेते ही मैं मार डालूंगा, इसलिए लेके जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि गलत व्यक्ति को मारना कोई पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ तो यह है कि गलत व्यक्ति को सुधार सको, यही पुरुषार्थता है। यदि तुमने मार दिया गलत व्यक्ति को तो उससे क्या पुरुषार्थता हो गई? एक मारोगे दूसरा पैदा होगा, दूसरा मारोगे तीसरा पैदा होगा, तीसरा मारोगे चौथा पैदा होगा। लेकिन तुम एक गलत व्यक्ति को सुधारोगे तो वो सुधरा हुआ गलत व्यक्ति दूसरों को सुधारेगा, और तुम तो सुधारोगे सुधारोगे वह भी सुधारने के लग जाएगा, और वह जिसको सुधारेगा वह भी और को सुधारने लग जाएगा। इसीलिए यदि एक को सुधार सको तो इस सुधारने का क्रम इस तरह शाखा प्रतिशाखा न्याय से जाता रहेगा, बढ़ता रहेगा कि सारा समाज सुधर सकता है। तो नारद जी ने कहा इंद्र को, तो नाश करने की बात नहीं करना, सुधारने की बात करो। अरे हमने तो नाश करने के उद्देश्य से कयाधु को हरण करके लाए हैं, तो अब क्या करेंगे? तू सुधार नहीं सकता है तो मैं सुधारूंगा, छोड़ दे, मैं अपना आश्रम है जंगल में, पर्णकुटी है, वहीं रखूंगा, वहीं पालूंगा, जब पैदा होगा तो फिर ये सुधरा हुआ पैदा होगा, ये राक्षस होकर पैदा नहीं होगा, ये भगवान का परम भक्त होकर, संत होकर, गुरु मूर्ति होकर पैदा होगा। तो इंद्र ने छोड़ दिया, छोड़ दिया तो नारद जी ले गए अपने आश्रम में कयाधु को, और गर्भस्थ शिशु को सुधारने के लक्ष्य से ही कयाधु को सुनाते हुए दिव्याति दिव्य भगवत लीला, भगवत चर्चा, भगवत भक्ति, ज्ञान, योग, भक्ति सब का उपदेश करते हुए, परमात्मा में परम निष्ठा भाव को जगाते हुए उपदेश किया, लक्ष्य है गर्भस्थ शिशु को सुधारना, वंश सुधारना। आजकल जो है हाइब्रिड का जमाना आ रहा है, जहां देखो वहीं हाइब्रिड है। तो क्या है ये? बोले नस्ल सुधारने का है ना, मुझे लगता है यही है ना हाइब्रिड की जो जमाना, नस्ल सुधारने का। अच्छा उत्पादन हो, क्वालिटी के वस्तु उत्पादन हो, उस कहते हमने नस्ल सुधार ली। अरे मूर्खो, तुम अपने नस्ल बिगाड़ते जा रहे हो और अनाज की नस्ल सुधार रहे हो, वनस्पतियों की नस्ल सुधार रहे हो, और अपने नस्ल को सुधारने का तुमने क्या प्रयत्न किया? बोलो, विश्व ने कोई मिशन चलाया है मानवीय नस्ल सुधारने के लिए? है? चलाया है, जबकि विश्व एक ही पक्ष में लगा है कि मानव किस तरह बिगड़ जाए। ये जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनको तो मानव बिगड़े तभी उनको फायदा है, मानव सुधर जाए तो क्या फायदा है? इस बात को लेकर आजकल रामदेव जी खूब लगे हैं, है? रामदेव जी लगे हैं, लगे तो हैं, कितना सफल होते हैं देखते हैं, लगे हैं बेचारे। भारत स्वाभिमान बिगाड़ने वालों के विरोध में मोर्चा खोल लिए उन्होंने, चाहे वह घरेलू बिगड़ेल हो चाहे वैदेशिक बिगड़ेल हो, सब बिगाड़ने वाले बिगड़े हुए के विरोध में मोर्चा खोल लिया है। ईश्वर करे कि उनका मिशन सफल हो, है? लेकिन कितना होगा? तो नारद जी सफल हो गए अपने मिशन में। जब पैदा हुए प्रहलाद जी तो क्या परम भगवान के परम भक्त के रूप में पैदा हुए, और उनके तो परमात्मा भाव से अतिरिक्त और दूसरा भाव ही नहीं है, भगवान का परम भक्त हो गए। और उन्हीं के वंश में फिर पैदा हो गया विरोचन, प्रहलाद का बेटा विरोचन। अब यही प्रहलाद जी गलती कर गए कि अपने बच्चे को सुधार नहीं सके वो, जैसे हम लोग गलती करते जा रहे हैं, हम लोग खुद सत्संगी हो रहे हैं, बच्चों को सत्संग में प्रेरणा नहीं कर रहे हैं, हम खुद संतों और सब महात्माओं का, गुरुओं का आदर करते हैं और बच्चों को आदर करने की बात सिखा नहीं पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं हम। तो वही हाल प्रहलाद जी का हो गया है, खुद तो सुधर गए, राक्षस कुल से देव कुल में पहुंच गए वो, लेकिन अपनी जो प्रहलाद अपने ही बेटा विरोचन उसको नहीं सुधार सके। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है, अब विरोचन राज्य के योग्य हो गया है, तुम चलाओ राजपाट, अपने तो चलते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारे वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति है। ये संस्कृति और पाश्चात्य में ये वाक्य नहीं है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम वहां ये उपदेश नहीं दिया गया है। यौवने विषयिषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम ये उपदेश नहीं है वहां, और योगे नान्ते तनुत्यजाम इसकी तो और भी कल्पना ही छोड़ दो। जब वार्धक्य में मुनिवृत्ति नहीं है तब फिर योगे न अन्ते तनुत्यजाम ये बात कहां आएगी। वहां तो जन्म से मृत्यु तक केवल एक ही भावना है कि कैसे भोग विलास करें, कैसे कितनी क्षमता से भोग विलास करें, संसार के पदार्थों को भोग सकते हैं। आज परिणाम ये हो रहा है कि 10 वर्ष के बच्चे जो पूरी तरह ब्रह्मचर्य अवस्था में रहकर विद्या साधना में लगनी चाहिए, वे सब के सब गुंडे हो रहे हैं। माँ बाप रो रहे हैं उनके, तुमने क्या दिया उनको। प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है, बच्चे को सुधार तो नहीं सका लेकिन अपने को तो सुधार सकता हूं। दे दिया राजगद्दी और चले गए साधना करने, भगवत भक्ति में वार्धक्य मुनिवृत्ति को धारण कर लिया उन्होंने। और विरोचन, वो तो विरोचन ही है। तो हमने कई बार विरोचन शब्द का अर्थ किया है, बाहर के पदार्थों को रुचि पूर्वक देखने वाला जो व्यक्ति है उसी को विरोचन कहते हैं। तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मा। बाहर के पदार्थों को तो बड़े प्रेम से, बड़े रुचि से, बड़े चाव से, बड़ी आत्मीयता से देखता है। देखता है इतना ही नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए सारा प्रयत्न करता है। इंद्रियों से बाहर के पदार्थों को खोजने वाले व्यक्ति का नाम है विरोचन। और इंद्रियों से जो भी खोजेगा, यदि परमात्मा को भी इंद्रियों से खोजेगा तो ये निश्चित समझ लेना कि वो विरोचन है। परमात्मा को ध्यान दे लेना, इंद्रियों से परमात्मा को जो खोजेगा ये निश्चित समझ लेना कि वो विरोचन ही है। क्योंकि इंद्रियों से जो दिखाई देने वाला है वो दृश्य होगा, और जो दिखाई पड़ेगा वह दृश्य होगा। दृश्य जड़ होता है और जड़ अनात्मा होगा, परमात्मा तो होने की बात ही नहीं है। आंख से दिखाई देने वाला व्यक्ति या वस्तु आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा युष्मद पद का अर्थ है ही नहीं कि जो आंखों से दिखाई पड़े। आंखों से माला दिख रहा है, इस माले को हम हमेशा युष्मद कहते हैं, अस्मद नहीं कहेंगे। ये माला कभी भी मैं नहीं कह सकता है, न माला मैं कह सकता है, न मैं कह सकता हूं इस माला को लेकर। तो ये युष्मद है, यह है। और जो युष्मद है वह कभी भी अस्मद नहीं हो सकता है, और वो कभी इंद्रियों से, अस्मद इंद्रियों से नहीं दिखता।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉटर रेडियो, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, You are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Gananada Nayanar Puranam. Presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakto.
4: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Shankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: साधु वृत्तां, तीसरी विशेषता है साधु वृत्तां, सरल पद युताम का अर्थ होता है इन कविताओं में जो पद का प्रयोग किया मैंने वह क्लिष्ट व्याकरण के हिसाब से क्लिष्ट पदों का प्रयोग नहीं किया है।

क्या नहीं करते बाबा, संस्तूयमानाम सद्भी। अरे सज्जनों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है, साधुओं ने बड़ी प्रशंसा की है। कोई भी साधु को शिवानंद लहरी का इस श्लोक आप सुना दो, क्या कहना, वाह वाह वाह वाह वाह, क्या सुंदर कविता है। ये कविता की प्रशंसा करते हैं। सरस गुणयुताम है, कविता में रसों का प्रयोग होता है, काव्य में किसका प्रयोग होता है, रसों का, अलंकार छंद और रस, वात्सल्य रस, करुणा रस, वीर रस, विभत्स रस, उग्र रस, सौम्य रस। कविताओं के मैं ये रसों का भाव आना चाहिए। सेनाओं को कोई कविता सुनाने जाओ, उसमें करुणा रस वात्सल्य रस सुनाओगे तो सेना क्या करेगी, वो एक मच्छर को मारने में भी डरेगी, वो तो तुम्हारे देश के धर्म की रक्षा करेंगे। वहां तो तुमको कहना पड़ेगा, हाँ, हत्वा वा प्राप्त से स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष से महिम, मारो लड़ो युद्ध करो। युद्ध करते करते तुम यदि मर गए तो तुम्हें सीधा स्वर्ग प्राप्त होगा, और जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। लड़ो, मारो, मरो, या मारो या मरो, जनी हटना। ये क्या है, वीर रस, इनके खून खौलने लग जाता है ये कविता सुनाते समय, तब वो पीछे हटेंगे। वात्सल्य रस, एक मां और बच्चे के भाव को व्यक्त करना होगा तो वीर रस का प्रयोग करना होगा। वह कविताओं में एक मां अपने बच्चे के प्रति क्या भाव व्यक्त करती है, उसमें वात्सल्य रस का प्रयोग करना पड़ेगा। करुणा रस, कोई साधन संपन्न धनिक व्यक्ति किसी गरीब असहाय की सेवा करने लगा हो, उसके लिए प्रेरित करना होगा, तो वहां उस कविताओं में करुणा रस का प्रयोग करना पड़ेगा, और तुम उस कविता को पढ़ते पढ़ते उसका हृदय द्रवीभूत हो जाए, और देने की इच्छा न हो तो भी देने की इच्छा जग जाए, आदि आदि। कविताओं में, काव्यों में रस का प्रयोग होता है, श्रृंगार रस, समझे कि नहीं, वैराग्य रस। अब एक सन्यासी को श्रृंगार रस सुनाओगे तो क्या हाल होगा उसका, तुम्हारा लड़का शादी नहीं कर रहा हो तो श्रृंगार रस सुनाओ, तुम्हारी लड़की शादी नहीं कर रही हो तो श्रृंगार रस से भरे हुए कविताएं उसको खूब सुनाने शुरू करो। अब एक सन्यासी के पास जाकर श्रृंगार रस की कविता सुनाकर करोगे क्या, वहां तो जितना हो सके वैराग्य रस से भरे हुए कविता सुनाओ। गात्रम संकुचितम गतिर विगलितम भ्रष्टाच दंतावली दृष्टिर नश्यति वर्धते बधिरता गात्रम चलालायते वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनै भार्या न शुश्रूषते आकष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसा पुत्रोपि मित्रायते। वैराग्य रस है, देख लो, ये बुढ़ौती का वर्णन कर दिया है, बुढ़ौती में ये सब चीज आने वाली है, इसलिए वैराग्य ही होना चाहिए। भोगा न भोक्ता वयमेव भुक्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो नहीं हत वयमेव याता। देख लो ये क्या है, वैराग्य रस।
हम समझते थे कि हमने इतना भोगा इतना भोगा इतना भोगा, लेकिन ये भोग तो ज्यों के त्यों है, हम ही भोग द्वारा भोगे गए, हम कमजोर हो गए, वो तो ज्यों के त्यों है। हम समझते कि हमारी तृष्णा कमजोर हो गई, तृष्णा बूढ़ी हो गई, लेकिन तृष्णा तो ज्यों के त्यों तरुणी हो रही है और हम ही बूढ़े हो गए। हमने सोचा कि हमने तो 80 साल निकाला, अरे 80 साल तुम्हारी कहां गई, तुम्हारा 80 साल गया, तुम्हारा गया, तुम घाटे में हो गए, तुम्हारा बैलेंस कम हो गया, कालो नहीं आता, हमने कहा काल को टाल दिया, अरे काल क्या टाल, काल हमको कहा गया। वैराग्य रस, ऐसे काव्यों में रस का प्रयोग होता है। शंकराचार्य जी कहते मैंने प्राय करके सभी रसों का इन कविताओं में प्रयोग किया है, वीर रस का भी, विवत्स रस का भी, वात्सल्य रस का भी, कारुण्य रस का भी, वैराग्य रस का भी, सब रसों का प्रयोग किया है। सरस गुणयुताम लक्षिताम लक्षणाढ्याम, दूसरी बात है कि इन कविताओं के माध्यम से लक्ष्यार्थ को भी हमने, केवल वाच्यार्थ का प्रयोग नहीं किया है, कविता में वाच्यार्थ असंगत होने पर भी लक्ष्यार्थ सुसंगत है। उद्यत भाषा विशेषा उपगत विनयाम, उद्यत भाषा सुक्तियां बोलते हैं उसको, सुभाष, सुभाषित माने सुक्ति, अच्छे अच्छे दूसरों को सुनाने के लिए, अपने को मनन करने के लिए सुक्तियों का प्रयोग किया है। सुक्ति रत्न जैसे चमकते हैं, वैसे ही सुक्ति रत्न, सुक्ति माने सीपी में ही मोती होता है, इसलिए सुक्ति नाम सीपी का, सीपी से उत्पन्न होने वाला मोती है, उसकी जो चमक है, ऐसे सुवासित हैं इसमें। उपगत विनयाम द्योतमानार्थ रेखाम, लक्षणार्थ आप देख लो मेरी बेटी का हाथ का रेखा देखो, है सभी लक्षणों से युक्त है मेरी बेटी का रेखा, आयु की रेखा भी पूरी है, बीच में नहीं मरेगी। आयु रेखा आपको पता है कि नहीं, अपने हाथ में आयु रेखा होता है, दूसरे धन रेखा होता है, और तीसरा विद्या रेखा है, चौथा स्वास्थ्य रेखा है, रेखा सामुद्र विज्ञान, उसको सामुद्र विज्ञान बोलते हैं रेखा संबंधी, सब रेखा देखो तो हर रेखाएं एक से एक है, वाह क्या गजब की रेखा है इसके हाथ में। द्योतमानार्थ रेखां कल्याणीं, हर हालत में ये बहुत ही कल्याणी शुभ लक्षणा है, सबका कल्याण करने वाली है। एक बार दिल्ली में कथा कर रहा था, एक माताजी आकर, पंजाबी माताजी थी, उसका एक बेटा था, शादी करने की बातचीत चल रही थी, तो मैं कथा करके खत्म करके कमरे में जाने लगा, तो महाराज आपसे कुछ बात करनी है। हमने कहा ठीक है बोलो बैठो, क्या कहना है। तो आगे बैठ के उसने पहले तो हमारी बड़ी प्रशंसा कर दी, आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत विद्वान हो, आप संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, बड़े पुरुष हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। तो हम भी मक्खा हो गए, भाई बढ़िया, क्या प्रशंसा कर रही है, है? बोलो क्या कहना चाहती हो मां। बोले महाराज मेरे बेटे की शादी की तैयारी चल रही है, आप बताओ
आने वाली बहू कैसी होगी। ये सब सच घटना है, मैं गप नहीं कर रहा हूं। उसने यही कहा कि आप बता दीजिए महाराज, जो बहू आएगी कैसे आएगी। अब उसने इतनी प्रशंसा की तो हम भी नाटक करने लगे, चपटा आंखा बंद करके, आंख बंद करके थोड़ा ध्यान किया, ऐसे थोड़ी बोलना है। दो तीन मिनट के बाद आंख खोल के श्वास लंबे श्वास फेर कर, माता जी जैसे भी आएगी आपका कल्याण करने वाली आएगी, जो बहू आएगी आपके कल्याण करने वाली आएगी, महाराज सेवा करने वाली आएगी ना। आपने कहा सेवा करे चाहे झगड़ा करे, आपके कल्याण ही करेगी वो है। आप समझ लेना, ध्यान लेना, ध्यान देकर सुनना, चाहे सेवा करे चाहे झगड़ा करे वो आपके कल्याण करेगी वो। सो कैसे महाराज, सेवा करे तो ठीक है, झगड़ा करे तो हमारा कैसे कल्याण करेगी। तो हमने एक दृष्टांत दिया, सेवा करने वाली से झगड़ा करने वाली अच्छी होती है, दृष्टांत दिया। वह तुम्हारी खूब सेवा करेगी तो तुम्हें बहुत सुख होगा, सुख होगा तो तुम्हारा पुण्य क्षय होगा। बात समझ में आई कि नहीं तुम लोगों को, बोलो ये स्वीकार करोगे कि नहीं। क्योंकि तुम्हारे पुण्य से वो बहू अच्छी आ रही है और तुम्हारे पुण्य के चलते ही वो तुम्हारी खूब सेवा कर रही है, और सेवा कर रही इसलिए तुम्हें बड़ा सुख बड़ा आनंद आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा पुण्य क्षय हो रहा है, तुम्हारा जो अच्छा बैलेंस था वो माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा है ये, अच्छा बैलेंस तुम्हारा माइनस हो जाए, ये अच्छा है। अब यदि कोई बहू आए तुमसे झगड़ा करने वाली तो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप के चलते गलत बहू आती है झगड़ा करने वाली, और तुम्हारे पाप के चलते वो झगड़ा करेगी, झगड़ा करेगी तो तुमको दुख होगा, और दुख होगा तो पाप कटेगा। तो तुम्हारे जीवन के जो पाप कर्म है दोष है क्षय हो जाएंगे। तो कौन सा क्षय करना चाहते हो बोलो, पुण्य क्षय करना चाहते हो कि पाप क्षय करना चाहती हो बोलो, हैं? पापक्षय हो ये चाहती हो तो तुम्हारी बहू दुष्ट आवे तो तुम्हारा पापक्षय होगा, और तुम चाहती हो कि मेरा पुण्यक्षय हो तो अच्छी बहू आए। तो मैं तो जहां तक समझता हूं, मेरा नौकर सेवा करने वाले के अपेक्षा झगड़ा करने वाले आए वो अच्छा है, क्योंकि मेरा पाप कटेगा। समझे कि नहीं? पाप कटना अच्छा है कि पुण्य कटना अच्छा है? पुण्य घटे और पाप बचा रहे ये तो अच्छा नहीं है, पाप कटे पुण्य बचा रहे, और पाप काटने के लिए तो झगड़ा करने वाली बहू आना पड़ेगा कि नहीं बोलो। अब स्वीकार करो तुम्हारे बेटे की शादी हुई कि नहीं? हमने तो वेदांत के दृष्टि से समझा दिया उसको, उसको जचा कि नहीं भगवान जाने, जच तो आपको भी नहीं रहा है, है? जस तो आपको भी नहीं रहा है कि आप भी नहीं चाहोगे कि मेरी बहू झगड़ा करने वाली आवे, लेकिन है यही चीज, सत्य बात तो यही है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कल्याणी मेरी बहू, मेरी कविता हर हालत में कल्याणकारी है, जो भी इसको धारण करेगा, आप धारण करो चाहे हम धारण करें, इस कविता सबके कल्याण करने वाली है। इमाम कविता कन्याम तम गृहाणा, आपको अर्पण करता हूं महाराज। इदम ते युक्तम वा परम शिव कारुण्य जलधे, शिव के लिए संबोधन है, परम शिव कारुण्य जलधे
संभो स्वामिन बहुत संबोधन है इसमें, एक ही श्लोक में, क्योंकि अंतिम श्लोक है इसलिए बहुत संबोधन है। कारुण्य जलधे माने करुणा का सागर, परम शिव महेश्वर, शंभो कल्याणकारी, स्वामिन सर्वस्वामी सबका स्वामी अभिभावक, तौ हरिहरौ गतौ तीर्य ग्रूपम तब पद शिरो दर्शन दिया, आपके पद और सिर चरण और मस्तक के दर्शन करने के लिए हरिहरौ गतौ। हरि ब्रह्माणौ गतौ, हरिहर ने हरि ब्रह्माणौ गतौ, ब्रह्मा ऊपर की ओर गए मस्तक के दर्शन करने, विष्णु नीचे की ओर गए चरण के दर्शन करने के लिए। तीर्यक रूपम, दोनों ने तीर्यक रूप धारण करके गए, ब्रह्मा पक्षी रूप धारण करके ऊपर गए, विष्णु पशु रूप धारण करके नीचे गए, दोनों तीर्यक योनि है, समझे कि नहीं? हाँ, आप अधय योनि है, वृक्ष ऊर्ध्व योनि है, पशु पक्षी तीर्यक योनि है। आप ऊपर से खाना खाते हैं तो सीधा नीचे जाता है, तो आप अधज स्रोत है, वृक्ष नीचे से पानी लेते हैं तो ऊपर जाता है, वृक्ष ऊर्ध्व स्रोत है, पशु पक्षी इधर से लेते हैं तो इधर जाता है तिरछा, तीर्यक स्रोत है ना? तो ऊर्ध्व स्रोत अध स्रोत तीर्यक स्रोत, ये जीवों के वर्गीकरण है। ब्रह्मा और विष्णु ने तीर्यक योनि को प्राप्त किया, पक्षी भी तीर्यक है, पशु भी सुअर भी तीर्यक योनि है। किसके लिए उन्होंने ये योनि धारण किया? तो बोले विष्णु ने आपके चरण पता लगाने के लिए धारण किया, दर्शन करने के लिए, ब्रह्मा ने मस्तक का दर्शन किया। इदं ते युक्तं वा परम शिव कारुण्य जलधे गतौ तीर्यग्रूपं तव पद शिरो दर्शन धिया हरि ब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि। ब्रह्मा ऊपर की तरफ दिवलोक की तरफ गए, सत्य ब्रह्मलोक तक गए, और विष्णु भुवि पाताल की तरफ पाताल तक पहुंचे। चरंतौ श्रमयुतौ, विचरण करते करते थक गए, श्रमयुतौ चरंतौ, लेकिन आपको आपका दर्शन उनको नहीं हो पाया, थक गए लेकिन आप उनके सामने प्रकट नहीं हुए। कथम शंभो स्वामिन कथय मम वेद्योऽसि पुरत। यहां द्व्यर्थक लाइन है कविता कि उन लोगों को भी आपका ठीक से दर्शन नहीं हुआ तो फिर मुझे कैसे दर्शन होगा, ये भी अर्थ है। दूसरा अर्थ है, महाराज इतना श्रम करने पर भी उनको दर्शन नहीं हुआ और आपकी ऐसी कृपा हुई, कथम, मैंने कोई परिश्रम ही नहीं की, यहीं बैठा हो रहे बैठे बैठे ही वेद्योऽसि पुरत, आप तो मेरे आगे ही खड़े हो गए, देख लो न मैं पशु रूप धारण करके पाताल में गया, न पक्षी रूप धारण करके दिवलोक गया, न कहीं भटका, न कुछ, यहीं बैठे बैठे मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं और आप सीधे ही दर्शन देने के लिए यहां आ गए, ये कैसे आ गए मैं आश्चर्य हो रहा हूं, चलो ये आपकी बड़ी कृपा है। और वहां पर भी शिव महिमा स्तोत्र में
पुष्पदंताचार्य जी ने इसी प्रसंग के साथ कह दिया है, स्वयं तस्थे ताभ्याम तब अनुवृत्तिम किम न फलती। पुष्पद महिमनि स्तोत्र में ब्रह्मा और विष्णु के सामने ही भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम घमंड छोड़ो, अभिमान छोड़ो, मैं बड़ा हूं ये घमंड छोड़ो। दुनिया में परमात्मा बड़ा है, परमात्मा से बढ़कर और कोई दूसरा बड़ा नहीं। तुम हम सब के सब उस परमात्मा के ही अंश हैं, अंग हैं, सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, उसी का जप करते हुए उसी को समर्पण होकर अभिमान रहित ब्रह्मा तुम सृष्टि करो, विष्णु तुम पालन करो, कर्ता भाव रहित अभिमान रहित होकर सृष्टि और पालन करोगे तो सृष्टि करते समय में वैषम्य सृष्टि करने का दोष तुमको नहीं लगेगा, पालन करते समय में वैषम्य रक्षा पालन करने का दोष भी तुमको नहीं लगेगा। अन्यथा अभिमान पूर्वक सृष्टि करोगे तो वैषम्य सृष्टि का दोष तुमको लगेगा, और अभिमान पूर्वक पालन करोगे तो वैषम्य रक्षा करने का पालन करने का दोष तुमको लगेगा। इसलिए बस अभिमान रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से सृष्टि और पालन करो, इसी में तुम्हारा हमारा सबका कल्याण है। तो शंकराचार्य जी ने इस तरह भगवान शिव के स्वयं आगे उपस्थित होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि महाराज, ब्रह्मा विष्णु को इतना परिश्रम करने पर भी आपने दर्शन नहीं दिया और मुझे एक सन्यासी के सामने आप इतनी आराम से खड़े हो गए हो। चलो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। एक श्लोक है क्या? ओ अच्छा अच्छा हाँ। स्त्रोत्रेणालमहं प्रवच्मि न मृषा। शंकराचार्य जी कहते हैं स्तोत्रेण अलम अहम, अब स्तुति में नहीं कर सकता, अलम हाँ बस, स्तोत्रेण अलम अहम प्रवच्मि न मृषा देवा विरिंचादयः। देवता लोग ब्रह्मा विष्णु आदि स्तुत्या नाम, संसार में बहुत स्तुति स्तुत्य व्यक्ति हैं, लोग ब्रह्मा की भी स्तुति करते हैं, विष्णु की भी स्तुति करते हैं, इंद्र की भी स्तुति करते हैं, स्तुत्यों की गणना करते हैं तो बहुत लोग हैं इस संसार में, समझे कि नहीं? गणना प्रसंग समय, लेकिन मेरी दृष्टि में तो स्तुतियों की गणना करने के प्रसंग में भले ही लोग कुछ भी कहें, मेरे दृष्टि में तुम अग्रगण्यम विदु, आप पहले नंबर के स्तुत्य हैं, उसके बाद विष्णु ब्रह्मा इंद्र कुबेर वरुण सब होंगे, हैं स्तुत्य तो बहुत हैं, लेकिन आप तुम अग्रगण्य। बड़ा ही सुंदर उपमा दिया है, महात्म्याग्र विचारण प्रकरणे धाना तुष स्तोमवत। अब इन स्तुतियों के महात्म्य कौन कितने महिमा वाला है, महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के जब विचार करने लगते हैं तो महाराज मैं सत्य कहता हूं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि जितने भी हैं वो सब तो धान के ऊपर जो तुसा है, छिलका है, उसकी तरह सिद्ध होकर फेंके जाते हैं, और आप ही चावल की तरह सिद्ध होकर हैं, आप चावल की तरह सिद्ध होते हैं, और ये सब भूसे की तरह, गुजराती भूसा नहीं हो, गुजराती में खाते हैं ना भूसा, हाँ। महात्म्याग्र विचारण प्रकरणे धाना तुष स्तोषम तोमवत,
दूतास्तम विदु उत्तमोत्तम फलम। सब लोग तो उड़ के चले जाते हैं। खेत में जब किसान खेती करता है, फसल को झाड़ता है, तो उस अनाज में कचरा जो होते हैं ना, है? तो उसको उड़ाने के लिए कि पक्का करता है या ऊपर उठा के ऐसे ऐसे करता है या मशीन लगाता है, हवा से उड़ाने शुरू करता है, तो वो सब उड़ जाते हैं। कौन? जिसके अंदर दाने नहीं है, भूसा और दाना नहीं है, ऐसे सबको उड़ के चले जाए। और जिसके अंदर दाने हों वो उड़ के उड़ नहीं सकते। तो ये जितने भी स्तुत्य हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब के सब को एक ही उसमें मिलाकर जब उड़ाने लगते हैं, ये सब उड़ के चले जाते हैं, आप एक बचते हैं दाने की तरह। महात्म्याग्र विचारण प्रकरणे दाना सुसास्तोमवत दूतास्तम विधु उत्तमोत्तम फलम। उस अनाज में जो ठोस उत्तम फल है वो नीचे बैठ जाता है, बाकी सब उड़ के चले जाते हैं। हे शंभो भवत सेवकाहा, मैं आपकी सेवक हूं और आप ही मेरे सेव्य हैं। आपसे बढ़कर और दुनिया में कोई सेव्य नहीं, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई स्तुत्य नहीं। इस भाव से शंकराचार्य जी ने अपनी कविता को भगवान शिव के चरणों में समर्पण किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्ति।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम पुरी जी महाराज की। भगवान विश्वनाथ के अनुकंपा से लगभग 2003 से 6 वर्षों से स्वाध्याय कराने का अवसर उपलब्ध होता रहा है और हर वर्ष कोई न कोई या तो अस्वस्थ हो जाता रहा या जो है नहीं आ पाया। एक वर्ष छोड़कर 5 वर्ष प्रवचन भी करना पड़ता और स्वाध्याय तो खैर करना ही पड़ता है, जैसी भगवान की इच्छा। हाँ, 2 महीना स्वाध्याय, शायद 22 दिन प्रवचन भी था, 1 वर्ष शायद नहीं था प्रवचन, केवल स्वाध्याय। तो आइए विचार करते हैं श्री महिमन के ऊपर। सर्वप्रथम यह विचारणीय विषय है कि मनुष्य जीवन में परमोपयोगी ऐसी कौन सी चीज है जिसको पाने के लिए हम सभी लालायित रहते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो आनंद को न चाहता, सभी आनंद के जिज्ञासु हैं। बचपना से प्रारंभ करके बुढ़ापे तक हम आनंद को ढूंढते हैं। आनंद को ढूंढते ढूंढते मौत के गाल में समा जाते हैं, फिर भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाते। वास्तव में आनंद है क्या चीज? वेदांत की भाषा में उसको सच्चिदा आनंद कहते हैं, सच्चित आनंद। उस परमात्मा का अपना स्वरूप है, जैसे अग्नि का स्वरूप है लौहित्य, शुक्लता और दाहकता। प्रकाश करना और जलाना अग्नि का स्वाभाविक अपना स्वरूप है। इसी प्रकार से परमात्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जो परमात्मा है वही जीव है। पर अनादि काल से अविद्या के कारण इस संसार में भटक रहा है और भटक करके अपने आनंद स्वरूपता को भूलकर संसार में ही विषयों में आनंद को ढूंढता रहता है। ढूंढते ढूंढते थक जाता है, इंद्रियां जवाब दे देती हैं, क्योंकि श्रुति कहती है नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस आनंद को उपलब्ध होने के लिए, अशेष समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, जिसको मोक्ष कहते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। एक में वह अद्वितीय रास्ता है जिसको हम भगवत प्राप्ति का रास्ता कहते हैं। लोग समझते हैं कि भगवत प्राप्ति में काल की अपेक्षा है, बहुत लंबा समय लगता है। जैसे कि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में एक समय की अपेक्षा होती है, विद्यार्थी पढ़ता है तो उसके पढ़ने में भी समय की अपेक्षा होती है, परंतु भगवत प्राप्ति में काल की अपेक्षा नहीं, अपितु भावना की तीव्रता अपेक्षित है। यदि हमारी तीव्र भावना है तो भगवान तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। भगवान शब्द का अर्थ सच्चित आनंद, जिसको आप बचपन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसको आप द्रव्यों में, पदार्थों में, पुस्तकों में, संसार में ढूंढ रहे हैं। पति पत्नी में ढूंढता है, पत्नी पति में और माता पिता बच्चों में ढूंढते हैं, वही आनंद स्वरूप को हम यहाँ पर भगवान सबसे अभिलापन करते हैं। तो उसको यदि पाना है तो भावना की तीव्रता अपेक्षित है।
अगर भावना में तीव्रता है तो परमेश्वर की प्राप्ति में विलंब नहीं होता है। एक बार देवर्षि नारद जी कहीं घूमते हुए जा रहे थे, उन्होंने एक जगह देखा एक महात्मा कठिन तपस्या कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, तपस्वी मैं वैकुंठ लोक को जा रहा हूं, तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझे पूछ लो। तपस्वी ने कहा, आप भगवान के बहुत प्रिय हैं, आप जाकर वैकुंठ नाथ से पूछना कि मुझ पर कृपा कब करेंगे, उनकी दर्शन कब होगी। नारद जी आगे बढ़े, थोड़े दूर गए कि दूसरा तपस्वी भी तपस्या कर रहा था, उससे भी नारद जी ने कहा कि भाई मैं वैकुंठ लोक जा रहा हूं, तुझे कुछ भगवान से पूछना है तो बता। तपस्वी ने कहा कि कृपा करके आप भगवान से पूछना कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा, तथास्तु, कोई बात नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा। नारद जी वैकुंठ लोक पहुंचे, वहां जाकर भगवान से पूछा कि जो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्वी तपस्या कर रहा उस पर आपकी कृपा कब होगी। भगवान ने कहा कि जाकर उसको कहना कि 7 जन्म के बाद मेरा दर्शन होगा। नारद जी ने कहा कि दूसरा तपस्वी जो इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा उसको आप दर्शन कब देंगे। भगवान ने कहा कि उसको बोलना इमली के पेड़ में इतने पत्ते हैं, उतने जन्म के बाद मेरा दर्शन होगा। नारद जी दोनों के समाचार को सुन करके समयानुसार पृथ्वी लोक में आते हैं। तपस्वी को बतलाया कि भगवान ने कहा है तुझे 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। तपस्वी ने कहा, 7 जन्म? आपने क्या कहा, और 7 जन्म अभी लेने पड़ेंगे? नारद जी ने कहा, भगवान ने ऐसा ही कहा है, बस जो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्वी था तत्काल उठ खड़ा हुआ, लगा गाली देने कि तेरा भगवान बेकार, तू बेकार, भगवान की भक्ति बेकार, इससे बढ़िया मौज से संसार में हम खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। वहीं पर गाली देके भगा चला संसार में। नारद जी सोचे, जब इसको हमने कहा तो ये 7 जन्म लगेंगे तो इसने तो इतनी गाली बकी, अच्छा हुआ कि कम से कम प्रहार नहीं किया। अब दूसरे के पास जाएंगे उसको बोलेंगे तो वो तो जरूर मारेगा। अब बेचारे सावधानी से गए, सावधान होकर दूसरे के पास गए, सोचते विचारते, वादा किया है तो जाना ही पड़ेगा। इमली के पेड़ के नीचे जो तपस्वी तपस्या कर रहा था उसके पास पहुंचकर और उसको भी बताया, बड़ा सत्कार किया, स्वागत किया। इसके बाद तपस्वी ने पूछा कि आप हमारे विषय में पूछे हैं, भगवान ने क्या आज्ञा दी है। नारद जी तुरंत खड़े हो गए। तपस्वी ने कहा, खड़े क्यों हो रहे? बोले, जरा जल्दी जाना है, कुछ काम है, मैं सोचा तुम्हें बताते चलूंगा। तपस्वी ने सोचा कि इतनी तत्परता, बोले ठीक है प्रभु, कम से कम बता दीजिए क्या समाचार है। नारद जी ने कहा कि भगवान ने कही है कि इस पेड़ में इतने पत्ते हैं, उतने जन्म के बाद हमारा दर्शन होगा। तपस्वी तुरंत उठा, नारद जी बिल्कुल भगने के लिए तत्पर। तपस्वी ने कहा, महाराज ठहरो तो सही, इतना तत्परता क्यों दिखा रहे, क्यों भाग रहे? बस उठकर नाचने लगा, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, हद हो गई। उसने कहा कि भगवान ने कम से कम सीमा तो बांध दिया, अनेक जन्म से हम संसार में भटक रहे हैं, कोई इसकी सीमा नहीं है, तो आज भगवान की बड़ी कृपा हुई कि इमली के पेड़ में इतने पत्ते उतने जीवन के बाद दर्शन देंगे। बस पत्ते आए गए, क्या समय लगता है, बहुत खुश हुआ। तो हम लोग भी जरा भगवान की स्मरण कर लें, जैसा तपस्वी ने किया था, श्रीमन नारायण ले नारायण ले नारायण ले। भजमन नारायण ले नारायण ले नारायण ले।

उस तपस्वी ने भगवान के भजन में विभोर हो गया, भाव भर आया। नारद जी ने सोचा कि एक तपस्वी को हमने कहा 7 जन्म लेने पड़ेंगे, वो घबरा गया। दूसरे तपस्वी को हमने कही इस इमली के पेड़ में इतने पत्ते हैं, उतने जन्म के बाद भगवान दर्शन देंगे, यह भाव विभोर होकर नाचने लगा। नारद जी वही खड़े होकर देखने लग गए, इतने भगवान ने दर्शन दिया। नारद ने कहा कि हद हो गई, मुझे भगवान ने झूठा बना दिया। नारद जी ने कहा कि भगवान पहले आप मेरे शंका का समाधान कीजिए। आपने कही थी कि इमली के पेड़ के पत्ते जितने हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, आप तत्काल दर्शन दे दिए। भगवान ने कहा देखो नारद, भगवत दर्शन में काल की अपेक्षा नहीं, भावना की तीव्रता अपेक्षित है। इसकी भावना इतनी तीव्र हो गई कि हमें तत्काल दर्शन देना ही पड़ा। पूरा ब्रह्मांड काल के अधीन है, परंतु त्रैकाल अवाध्यत्म एक परमात्मा ही है, जिसमें काल की कोई मर्यादा नहीं, काल की कोई सीमा नहीं। इसलिए भगवान को अकाल पुरुष भी कहते हैं, कालो काल महाकाल पुरुष भी कहते हैं। तो हमारी तीव्रता होगी तो भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं होगा। और सभी भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो भगवान का दर्शन सच्चित आनंद को उपलब्ध होना नहीं चाहता है। परंतु इसमें बड़ी अड़चन है, हम लोग भगवत प्राप्ति में भी सुविधा ढूंढते हैं। सुविधा वही ढूंढता है इसे आनंद प्राप्त नहीं होता है। जब आप कोई व्यापार करते हैं, काम धंधा करते हैं, तो वहां पर आप सुविधा दुविधा कुछ नहीं देखते हैं। आपका लक्ष्य है पैसे कमाना, बस उसी में लगे रहते हैं। रात्रि के 12 बज गए फिर भी दुकान खुली रहती है। इसी प्रकार से जैसे धन की प्राप्ति में तत्परता होती है, ऐसी भगवत प्राप्ति में तत्परता हो तो भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं होता है। भगवत प्राप्ति सभी का, भगवान की प्राप्ति के जो साधन है उसमें आनंद है। जैसे कोई बद्री विशाल यहां से चले, मालूम पड़ा 300 किलोमीटर है, वह जब किलोमीटर को लिखा हुआ देखता है, जब केवल 200 रह गए, अब 100 रह गए, 50 रह गए, 25 रह गए, 10 रह गया, 8 रह गया, बहुत खुश होता है, मैं बहुत नजदीक पहुंच गया। ऐसे ही साधन करने वाले को भी तीव्रता से मन में प्रसन्नता होती है, और तीव्रता तभी आएगी जब हमारे मन में विषयों से वैराग्य होगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं वैराग्यस्य फलम बोधः, वैराग्य का फल है आत्मज्ञान। ये विषयाशक्ति भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा प्रतिबंधक है, क्योंकि मन हमारा एक है। जब हमारा मन विषय का चिंतन करता है, तो हम जब भगवान का चिंतन करते तब भी उसमें भी हमारा मन विषयों की तरफ लगा हुआ होता है। विषय से कलुषित मन भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसलिए श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। एक श्रुति ने कह दिया कि मन वाणी का विषय नहीं परमात्मा, इसके विपरीत दूसरी श्रुति कहती है मनसैव अनुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि। दो श्रुतियां कहती हैं कि मन के द्वारा ही साक्षात्कार होता है, शुद्ध बुद्धि का ही परमात्मा विषय है। तो जहां पर यह बात कही गई कि मन वाणी का विषय नहीं, उसका तात्पर्य है कि विषय से कलुषित, वासनाओं से दूषित जो हमारे नेत्र हैं या अंतःकरण, उनसे उसका साक्षात्कार असंभव है। जब हमारे अंतःकरण इंद्रियां भगवान के भजन से निर्मल हो जाते हैं तो इसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए कह दिया कि दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि, और इसके लिए उपासना साधना अनुष्ठान करना पड़ता है।
यदि ब्रह्म उपासना अनुष्ठान साधना का विषय नहीं होता तो वेदांत में इतनी उपासनाओं की चर्चा नहीं आती। ब्रह्म निर्विशेष है, किसी साधन का विषय नहीं है, फिर भी साधन की अपेक्षा अविद्या के नाश में है, अंतःकरण के पवित्रता में। जो हमारे अंतःकरण के तीन दोष हैं, मल विक्षेप आवरण, मल दोष की निवृत्ति निष्काम कर्म से होती है और विक्षेप की निवृत्ति उपासना साधना अनुष्ठान से होती है, और अविद्या का नाश आवरण भंग ज्ञान से होता है। जैसे किसी बर्तन में जल रखा हुआ है, जल में सूर्य का प्रतिबिंब तो पड़ रहा परंतु साफ नहीं, साफ नहीं है तो आप जल में फिटकरी घुमाते हैं, फिटकरी घुमाने से मैल नीचे बैठ जाता है, इसके बाद भी हिलता जुलता जल तो आप चारों तरफ से घेर देते हैं ताकि हवा न लगे, उससे विक्षेप हिलना डुलना बंद हो जाता है। जब हिलना डुलना बंद हो जाता है तो तत्काल सूर्य का प्रतिफलन पड़ता है। ऐसे हमारे अंतःकरण में जो मन विक्षेप दोष है इनको दूर करने का साधन है निष्काम कर्म सेवा, और विक्षेप के लिए उपासना साधना करना पड़ता है, क्योंकि तो विक्षिप्त मन के द्वारा तत्व का साक्षात्कार असंभव है। इस कान से सुने दूसरे कान से निकल जाएगा, मन विक्षिप्त होगा तो। इसलिए कहते हैं अन्यत्र मनाभुवम ना श्रोषम, सुनते हुए भी सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा मन विक्षिप्त होता है। इसलिए विक्षेप की निवृत्ति के लिए उपासना की अपेक्षा होती है। यहाँ शिव महिमन बड़ा सुंदर शिव की महिमा का वर्णन किया है। यहाँ शंका होती होगी यहाँ शिव स्तोत्र क्यों नहीं लिखा, जैसे विष्णु स्तोत्र, कृष्ण स्तोत्र, देवी स्तोत्र, वैसे शिव स्तोत्र इसका नाम नहीं रखा, शिव महिम ने स्तोत्र रखा, इसलिए ऐसा करना पड़ा। क्योंकि शिव साक्षात जो निर्गुण निराकार तत्व है, चैतन्य है, जो ब्रह्म है, वह मन वाणी का विषय नहीं, स्तोत्र की पहुंच वहां होती है जो हमारे वाणी का शब्द का विषय होता है। सगुण साकार जो भगवान के अवतार हैं वे तो मन वाणी के विषय हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार है, उनके आकार है, प्रकार है, त्रिभंग ललित है, तो मन वाणी का विषय होने से कृष्ण स्तोत्र कहते हैं। देवी का भी सगुण साकार स्वरूप है, भगवान विष्णु का भी, तो वहां पर तो यह कथन संभव है, विष्णु स्तोत्र, देवी स्तोत्र, कृष्ण स्तोत्र, राम स्तोत्र, परंतु भगवान शिव अजन्मा है, निर्गुण निराकार है, इसीलिए पुष्पदंताचार्य जी ने बड़ा सोच कर इसका नाम रखा शिव महिमना, शिव की महिमा, विभूति ऐश्वर्य। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कही है मच्चिता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तः च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यहां माम शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया है कि भगवान की विभूति, क्योंकि तो भगवत तत्व का वर्णन मन वाणी से संभव, इसीलिए कह दिया कि भगवान की जो विभूतियां हैं, ऐश्वर्य हैं, उनके गुण लीला है, उसकी महिमा की जा सकती है। इसलिए यहां पर कवि ने शिव महिमना स्तोत्र इस ग्रंथ का नाम दिया। यहां शिव स्तोत्र न लिखकर शिव महिमा ही रहस्य लिखने का है। और महिमा सुनने के बाद स्वतः सुनने वाले की उधर प्रवृत्ति होती है। जैसे योग दर्शन में महिमा बतला दिया कंठ कूपे संयमात सुत पिपासा निवृत्ति, कंठ कूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है, प्राणपान का संयम करने से आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे रिद्धियों सिद्धियों की बात सुनते हैं तत्काल आसन प्राणायाम में प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे आजकल वर्तमान युग में टेलीविजन में आप एडवर्टाइज देखते हैं, प्रचार तरह तरह के, प्रायः देखा जाए तो 70% तो प्रचार ही प्रचार होते हैं,
हर बात में प्रचार, हर बात में प्रचार। उस प्रचार को बार बार सुनते सुनते देखते देखते, और रेडियो से भी सुनते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, तीन तीन साधन है, सुनने का भी है, देखने का भी है, पढ़ने का भी है। तो जो व्यक्ति उस जिस चीज को लेना नहीं चाहता, वो अभी कहता एक बार लेकर देख लो तो सही, क्या है, नया मॉडल है, नई चीज है। तो इतनी महिमा का गुणगान टेलीविजन रेडियो के द्वारा हो रहा है, उस महिमा को सुनने के बाद अनायास प्रवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान शिव की महिमा सुनने के बाद उपासक उधर प्रवृत्ति हो जाए, इसलिए यहाँ पर शिव जी की महिमा यहाँ गाई गई है। तो महिमा वही व्यक्ति कह सकता है जो महिमा के विषय में जानता है। आजकल ऐसा भी होता है ना, कुछ भी नहीं जानते फिर भी 10-20 वाक्य लोग कंठ कर लेते हैं, और वही वाक्य सबके विषय में बोलते हैं, आप बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे हैं, समाज सुधारक हैं, चाहे उसके महिमा घटे या न घटे, परेटे हटाए शब्दों को बोल देते हैं, कोई दूसरा आक्षेप करे कि ये आपने जो बात कही वह तो उनमें घटती नहीं, तो जवाब देता है कि बड़े लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं, सब एक तरह होते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसे नहीं। पुष्प दंताचार्य जी ने भगवान शिव की महिमा का साक्षात्कार करके तब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जिस बात को खुद आप नहीं समझ रहे हैं, उस बात को कहने से दूसरा कैसे समझेगा। जब आप भजन करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, या कुछ अनुष्ठान करते हैं, उसके रहस्य को जब खुद नहीं समझेंगे तो दूसरा कैसे समझेगा। परंतु हमारे भगवान जो है ना, बिल्कुल उनको होश रहता है। इंसान बेहोश हो जाए, मन कहीं और वाणी कुछ और बोल रही हो, जैसे अजामिल, अजामिल मन से अपने बेटे जिसका नाम था नारायण उसका स्मरण कर रहा था, मौत के भय से अपने बेटे का नारायण नाम पुकार रहा था। तो भगवान को पता है कि नारायण हमारा नाम है, उसके बेटे का नाम तो बाद में पड़ा भी पड़ा और थोड़े दिन के लिए है। तो देखो, चाहे आप समझ करके, न समझ करके, जान करके, न जान कर, चाहे भाव कुभाव जैसे भी भगवान के महिमा गुणगान करेंगे, नाम लेंगे, तो निश्चित ही भगवान दर्शन देंगे, क्योंकि तो चैतन्य उसका नाम है। चैतन्य मतलब हमेशा चैतन्यता बनी रहती है। मनुष्य के चैतन्यता में विक्षेप आता है, प्रतिबंधक आते हैं, विषय चिंतन से मन डवाडोल हो जाता है, परंतु जो चैतन्य है, ब्रह्म है, आप उसका जैसे भी स्मरण करें, स्तोत्र पाठ करें, वो हमेशा सावधान रहता है, श्रवण करता है, इसीलिए जैसे भी करे उसमें फायदा ही है। अब शिव महिमन के विषय में एक गाथा प्रसिद्ध है, इसको भी सुना दें आप लोगों को। पुष्पदंताचार्य जी

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन तैत्तिरीय उपनिषद प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री आनंद नंदजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: भक्ति शक्तिता वासल मई माता वैष्णव मई बहनो आप सर्वबंधुओं, तो प्रसंग मंगलाचरण संबंधी चल रहा है, जिसके अंतर्गत ऋषि संकेत करता है। लेकिन यहां ऋषि कौन है? तो जिन्होंने भाष्यकार के उस भाष्य की हिंदी टीका की है, ऐसे वह ऋषि मंगलाचरण करते हुए संकेत उन्होंने किया कि पूर्व में जो ऋषियों ने चर्चा की या जो सिद्धांत बतलाया और जिसको पदवाक्य प्रमाण से पुरस्कृत करते हुए और उन्होंने उसकी चर्चा की, ऐसे उन समस्त ऋषियों को मैं नमस्कार करता हूं। और वो चर्चा जो की है वो क्या है? तो जिसमें समस्त शास्त्रों का जो अंतिम सिद्धांत है, जिसे वेदांत शब्द से कहा जाता है, ऐसे उस वेदांत की ही उन्होंने व्याख्या की, ये चर्चा की। तो वेदांत को लेकर के ही हम लोग उसको जीवन में कैसे समझें, तो समस्त श्रुतियों में आप देखते हैं ओम को उठा करके उसकी मात्राओं को लेकर के जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से उसका साम्य मिलाते हुए और इसी प्रकार से विश्व तेजस प्राज्ञ आदि से साम्य मिलाते हुए और वैसे ही विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर आदि से साम्य उन मात्राओं का मिलाते हुए जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से साम्य मिलाते हुए और उन्होंने उसमें प्रमाण देते हुए और उसकी व्याख्या और सिद्धांत को हमको बतलाया। हमारे पुराणों के अंतर्गत भी इस स्थिति को निर्वचित किया गया, अर्थात उसको बतलाया गया। संकेत थोड़ा हमने किया था कि भागवत के अंतर्गत यह जो उपनिषद कृत सिद्धांत है, उस सिद्धांत को ही समझाने के लिए उदाहरण रूप से, उपाख्यान रूप से और भागवत में चर्चा की गई है और बड़े सरल ढंग से उसे समझाया गया। और क्या उपाख्यान दिया? तो समंतक मणि को लेकर के उन्होंने उसकी चर्चा की।

0: के द्वारा क्या बतलाया, जागृत अवस्था क्या है, स्वप्न अवस्था क्या है, सुसुप्ति क्या है और उसमें जो मूल वस्तु है वो क्या है, ये चर्चा। तो आप देखते हो कि वहां पर चर्चा आती है, सबको कथा मालूम कि उसको जब भगवान श्री कृष्ण ने मांगा तो उसने दिया नहीं, लेकिन उसका फिर क्या रूप हुआ, तो कहने लगे उसी सत्राजित का भाई और उसको जो है गले में धारण करके और घोड़े पर सवार होकर के और भ्रमण के लिए निकल पड़ा। लेकिन आगे क्या हुआ, तो वहां आप सुनते हो बतलाया गया कि उसके उस भाई को किसी ने मार दिया और मड़ी को लेकर के चला गया, वो मड़ी उसके हाथ से भी निकल गई। फिर जो है आगे जाकर के देखते हैं तो वो उसे किसने मारा, घोड़े को भी मार दिया और उसे भी मार दिया। और आगे जो है फिर कहा कि उस मड़ी को लेके गया सिंह, कौन लेके गया, सिंह, और सिंह उस मड़ी को लेकर के गया, लेकिन जो है फिर आगे क्या बतलाते हैं कि सिंह को भी मार दिया और फिर उस मड़ी को जो है सिंह को मारने वाला वो ले गया। कहा वो कौन था, तो कहने लगे रीछ भालू, वो ले गया। अब वो उस मड़ी को कहां ले गया, तब क्या बतलाया वहां, कहा गुफा के अंदर ले गया और गुफा में ले गया और गुफा में जब गया तो वहां पर उसने उस मड़ी को रखा और उस मड़ी को रखा तो वहीं पर कौन था, तो कहने लगे बेटी उसकी है जामवती, और वह जामवती जो है उस मड़ी से खेलने लगी, उस मड़ी का आनंद लेने लगी, उसके प्रकाश में कार्य करने लगी और रीछ जो था वहीं पर है क्या हुआ, कहा सो गया। अब जब ये स्थिति हुई तो सत्राजित ने जो है सोचा कि भगवान ने मड़ी मांगी थी और हमने नहीं दी, तो इसका मतलब है इन्होंने ही हमारे भाई को है करके और मड़ी को ले लिया, तो ये उनको कलंक लगा। और हम लोग भी क्या कहते, जब कोई घटना घटित हो जाती है भगवान ने अच्छा नहीं किया, ये कहते हो, तो दोष किस पर आता, कहा भगवान के ऊपर। हम लोग भी कहते ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी है, ईश्वर ने ही ऐसा किया, पहले तो जब है तब कहते हो हमने किया, और जहां पर हमारी असहायता हो जाती है, हम जहां पर असमर्थ हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहा ईश्वर। इसलिए तुलसीदास ने काल है कर्म ईश्वरे, मिथ्या दोष, मिथ्या शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे ही सत्राजित ने भी किया। अब जब ये भगवान को कलंक लगा तो भगवान ने सोचा कि इस कलंक को धोना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो गीता भगवान क्या कहते, अपकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, है ना, इसलिए लोकापवाद से भी बचना चाहिए क्योंकि अपनी जो अपकीर्ति है वो मृत्यु से भी भयंकर। तो भगवान ने उस कलंक को हटाने के लिए क्या किया, कहा अन्य लोगों को भी साथ में लिया और उस मड़ी की खोज की, और खोज की तो आजकल तो साधन है, पहले प्राचीन काल में उतने मार्ग भी अच्छे नहीं थे, ऐसे साधन भी नहीं थे, तो क्या करते थे, जब चोर को उसकी चोरी पकड़ने के लिए खोजते थे तो क्या करते थे, पद चिन्हों को देख करके खोजते थे, उसके पैरों के चिन्हों को देखते जाते थे और फिर खोज करते थे। भगवान भी चल पड़े, कहा घोड़े पर सवार होकर के गया है तो घोड़े के पदचिन्हों को देखते हुए पहुंचे, और पहुंचे तो जिस जंगल में वह गया था तो वहां उस घोड़े को उसने क्या देखा, भगवान ने क्या देखा, अचेत पड़ा, मन मरा हुआ पड़ा, और जो है वो भी मरा हुआ पड़ा, मड़ी वहां नहीं। अब देखा आगे तो आगे सिंह के पैर दिखलाई दिए, और सिंह के पैरों को देखते हुए उन पदचिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो सिंह भी मरा हुआ मिला, और सिंह मरा हुआ मिला तो आगे पदचिन्ह किसके मिले, का भालू के मिले और उसको खोजते हुए जब गए तो वो भालू कहां तक दिखाई दिया, का गुफा के दरवाजे तक। तो समझ गए कि इसी गुफा में हुआ। अब उस गुफा में प्रवेश करने की अन्य की सामर्थ्य, तो भगवान ने कहा तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं जाता हूं। और भगवान उसमें प्रवेश कर गए और प्रवेश कर गए, फिर जो घटना हुई वो हुई। लेकिन इसको मूल जिस उद्देश्य से कहा गया, हमारी जागृत अवस्था क्या है, जहां पर हम इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करते हैं। इंद्रियां हमारी चेतन हैं और इंद्रियां संसार के पदार्थों को शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान कर रही हैं। उस अवस्था का नाम क्या है, का उसका नाम है जागृत। और इंद्रियों को श्रुति में उपनिषद में क्या कहा, इंद्रियान हयान आहु। इंद्री क्या है, का घोड़े, और घोड़ों पर सवार होकर के जाना ये है जागृत अवस्था। वहां तक तो जीव जो है क्रिया करने में अपनी तरफ से समर्थ, लेकिन आगे क्या हुआ, कहने लगे जहां पर घोड़े अचेत हो गए तो जीव भी असमर्थ हो गया और वो भी अचेत हो गया। लेकिन आगे फिर भी श्रृंखला चली, तो वो क्या चली, तो कहा सिंह की। और सिंह क्या है, सिंह जंगल का राजा है। सिंह क्या है, जंगल का राजा, और राजा है माने अकेला ही विचरण करता, अकेला ही सामर्थ्यवान है। तो सिंह विचरण करता, और स्वप्न अवस्था क्या है, ये सिंह कौन है, ये हमारा मन ही सिंह है, जो इंद्रियों के घोड़ों के न होने पर भी, जागृत अवस्था न होने पर भी, वहां तो अचेतता है, इंद्रियां नहीं है, उनका अभाव है, लेकिन वहां पर जो है सिंह का उस मणि से, मणि के सहयोग से विचरण होता, और सिंह जो है उस जंगल में उस मणि से खेलता है, ये समझ लो। तो जैसे वहां सिंह, वैसे ही हमारा स्वप्न के अंदर उस आत्ममणि से क्या करता है, उस आत्ममणि को धारण करके, यहां तो इंद्रियां भी जो उसको लेकर के जो है व्यवहार वाली होती हैं, लेकिन स्वप्न के अंदर केवल मन ही व्यवहार कर पाता, सारा व्यवहार मन का, मन मनोराज्य होता है। तो वहां पर जो है आत्ममणि से काम करने वाला कौन है, मन, और मन ही क्या है, का सिंह है। और फिर उस सिंह को भी अचेत कर दिया गया, उससे मणि छीन ली, मणि के अभाव में सिंह भी अब जो है अचेत हो जाता, और जब छीन ली गई तो कौन ले गया, का जामवंत भालू, रीछ है। और रीछ जो है उस मणि को जब ले गया तो सिंह भी अचेत हो गया, स्वप्न का काम भी, जागृत भी गया स्वप्न भी गया। और क्या हुआ, तो कहने लगे वो ले गया भालू, और भालू कहां ले गया, कहा गुफा में, है ना। इसी को वेद कहता है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। ये वेदांत सिद्धांत है, क्या है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो इस गुफा के अंदर निहित है, और कैसी गुफा है, परम व्योम रूप। एक तो सामान्य व्योम है आकाश, जिसे भूताकाश कहते हैं, और एक चित्ताकाश भी कहलाता, और जो परम व्योम है वो है चिदाकाश, चिदाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश। तो परम व्योम क्या है, तो परम व्योम है चिदाकाश, उस चिदाकाश और उस गुफा के अंतर्गत, तो अंतःकरण की ही गुफा। अब उस गुफा के अंतर्गत ले जाने वाला कौन है, का भालू। तो सिंह तो मन का प्रतीक हो गया, इंद्रियां घोड़ों का प्रतीक हो गई, ये भालू किसका प्रतीक है, ये है अज्ञान का प्रतीक, ये किसका प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक, काले रंग का भी है, तो अज्ञान का प्रतीक भालू। फिर अज्ञान जो है उस मणि को ले जाता, और अज्ञान ले जाता है तो कहां ले जाता, उस गुफा के अंदर, और उस गुफा में ले जाता है तो उसी का नाम है सुसुप्ति अवस्था, उसका नाम क्या है, सुसुप्ति अवस्था। और उस सुसुप्ति अवस्था में क्या क्या है, तो वहां पर आत्ममणि है, और आप मड़ी का जो सुख है उसको कौन ले रही है? जामवती है ना, माने वृत्ति, जामवती कह दो या वृत्ति, आपके इस जीव की ही जो वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है, वह उसका सुख ले रही है। लेकिन सुख तो ले रही है, सुख कैसे ले रही? अज्ञान से पराधीन होकर के, माने उस रीच से पराधीन होकर के, रीच की कस्टडी में वह विद्यमान है और गुफा से बाहर का उसे कोई पता नहीं, गुफा से बाहर का कुछ, लेकिन फिर भी वहां पर गुफा के अंतर्गत अज्ञान से जो है पराधीन होते हुए और उस आत्मड़ी से खेल रही। इसलिए आप जब जागृत में आते तो क्या कहते हो? बड़े सुख से सोया और कुछ भी कुछ नहीं जाना, ये अज्ञान की पराधीनता थी। और जो सुख हो रहा था वो किसका था? आत्ममणि का सुख था। और वहां पर ये दोनों, तो वहां पर हमारे जो अंतःकरण की वृत्ति सुसुप्ति अवस्था में होती है वो अज्ञान से आवृत होती है, लेकिन अज्ञान से आवृत होते हुए भी उसका आत्मा के साथ में तादात्म्य होता है, और आत्मा के साथ में तादात्म्य होने के कारण इंद्रियों से तादात्म्य हट जाने से, मन से तादात्म्य हट जाने से वह है क्या है? उस आत्मा के ही आनंद का अनुभव। जैसे वहां मणि के प्रकाश में वह खेलती, वैसे ही वह वृत्ति भी आत्मा के आनंद में, आत्मा के प्रकाश में, तो आत्मा के प्रकाश में क्या प्राप्त होगा? आत्मानंद ही प्राप्त होगा, आत्मानंद का वहां अनुभव करती है। ये है सुसुप्ति अवस्था, है ना। और भगवान फिर क्या करते? तो आगे कहते हो कि उस रीच को जगाते, और रीच को जगाते हैं तो भगवान से उसका क्या होता? का युद्ध होता है ना, और युद्ध होता है तो बाहर के लोग भाग आते और शिला और रख देते। लेकिन जो है भगवान का युद्ध होता है, और युद्ध होते होते फिर क्या कहते हैं आगे? कहा फिर जामवान उनको पहचान लेता, और पहचान लेता है तो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। पहले हार स्वीकार नहीं करता, अज्ञान भी पहले हार स्वीकार नहीं करता, तो हार स्वीकार कर लेता, और हार स्वीकार करके क्या करता? जिसको अपने अधीन कर रखा था, जिसे अपने अधीन कर रखा था, अब उसे क्या करता? कहा उन्हीं को समर्पित, मणि भी उन्हीं को दे देता है, और मणि पर भी अधिकार उन्हीं का, और वृत्ति को अर्थात उस कन्या को भी। और भगवान फिर उस मणि और कन्या को लेकर के पुनः आते हैं, हैं, और तब क्या करते? उस सत्राजित को देते हैं। लेकिन अब सत्राजित की समझ में आ गया तो सत्राजित क्या करता? उस मणि को भी दे देता है, और मणि को ही नहीं देता, अपनी कन्या सत्यभामा। ये कौन है? नाम भी शास्त्र बड़े शोध करके रखता है ना। तो अपनी वृत्ति को जो सत्य का ही प्रकाश करने वाली है, जो सत्य का ही अनुसरण करने वाली है, ऐसी जो वृत्ति है उस वृत्ति को किसको कर दी? दे दिया का सत्य को ही दे दिया। आत्मा क्या है? सत्य। भगवान क्या है? सत्य है। उनको ही अर्पित कर दिया। पहले नहीं किया था, पहले तो उस वृत्ति पर भी अपना काबू था, मणि पर भी अपना काबू था, है? लेकिन जब दे दिया तो फिर क्या हुआ? तो सत्राजित भी सुखी हो गया और सारा संसार भी सुखी हो गया, है ना। तो अब यहां कहने का तात्पर्य क्या? भगवान भी गीता आदि शास्त्र में यही तो कहते हैं, मई एव मन आधत स्व, मई बुद्धिम, मेरे में ही मन को लगा दे, मेरे में ही बुद्धि को लगा दे। लेकिन अभी बुद्धि और मन को हम कहां लगाए हैं? संसार में। हम समझते हैं कि ये जागृत अवस्था को लेकर के मैं हूं, इंद्रियों से संबंध लगा हुआ, इंद्रियों को लेकर के हम सामर्थ्यवान अपने को समझ रहे हैं, ज्ञानवान समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रकाश जो है इंद्रियां करने में समर्थ, इंद्रियां भी उस आत्ममणि को लेकर के ही करने में समर्थ हैं, और वगैरह उसके प्रकाश संभव नहीं। ऐसे उस आत्मा का ज्ञान कब होता है? जब इन तीनों अवस्थाओं का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का प्रारूप क्या है, और यही वहां भागवत में बतलाया, उनको जब हम समझ लेते हैं तो फिर हमें जो जिसे हम चतुर्थ कहते हैं, तुरीय कहते हैं, उस तुरीय का बोध होता है। और जैसे ही तुरीय अवस्था का बोध होता है तो वहां पूर्णता आ जाती है, और जहां पूर्णता आ जाती है तो क्या होता, फिर लोक व्यवहार में भी वो सुखी हो जाता। किसी को जीवन मुक्त भी कह देते हैं, और फिर जो प्रारब्ध आदि की जो कल्पना की गई उसके बाद जो है फिर उसको क्या कहते हैं, का विदेह मुक्त भी कह देते हैं। ये स्थिति होती है, लेकिन ये स्थिति कब होती है, तो ये तभी होती है जैसे वह मन भी है, सिंह भी मर गया, इंद्रियां भी मर गई, अर्थात इनको हम परास्त करते चल जाए, इनके हम पराभूत न हो, और इनके पराभूत होकर के अंत में जो अज्ञान है उसके पराभूत भी न हो, उसको भी जो है हम कर दें, हरा दें, पराभूत कर दें, तब जाकर के क्या होता है, कहने लगे तब वो वृत्ति जो आत्मड़ी से वहां खेल रही थी, तब वह अज्ञान नहीं रहेगा, तब वह जागृत में भी उसका सुख ले सके, जागृत में भी उसका सुख उसे मिलेगा। ये संकेत वहां पर किया गया और ये प्रकाश आता है। ऐसे ही जितने भी हमारे अवतार हैं ना, वो कैसे हैं, वो इन अवस्थाओं को एक खेल समझते हैं, अवस्थाओं को धारण करने वाले और खेल समझते हैं, उनके साधनों को भी समझते हैं, लेकिन मूल वस्तु क्या है इस चीज को वो जानते हैं और खेल करते हैं, लेकिन जहां पर अज्ञान से पराभूत हो जाते हैं, इसलिए लोग गाते हैं ना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना बन गया देह में ही दीवान, खेल में खेलता दुख नित झेलता ना अघाना है, मृग तृष्णा के जल में नहाना है, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जी है। तो ये सच्चिदानंद प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन इन्हीं अवस्थाओं को लेकर के इनमें जब वह इनका अतिक्रमण नहीं कर पाता है, इनसे परे जो चतुर्थ रूप है उस तक पहुंचता नहीं है, तब तक इन अवस्थाओं में लेकर के सुखी दुखी होता रहता। ये अवस्थाएं उसका क्या है, तो कहने लगे उसकी यात्रा की स्टेशने हैं, है? लेकिन हम उन्हें स्टेशन न समझ करके मंजिल ही समझ, क्यों, वहां अज्ञान कारण है, और जब तक ये अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक ये उपनिषदों का सिद्धांत सिद्ध नहीं होता। ये संकेत किया, और इसलिए जो अवतार की बात की, तो जहां पर अवतारों की बात, तो भगवान राम जो है जब सारे के सारे क्रियाकलापों से निवृत्त होकर के अयोध्या में आ गए, और अयोध्या में आ गए तो क्या वहां लिखा, तो राम राज बैठे, भगवान राम राज पर बैठे तो क्या है, कहा हर्षित भये गए सब शोक, तीनों लोकों में क्या हुआ, प्रसन्नता हो गई, सारे शोकों की निवृत्ति हो, लेकिन कब हो गई, उन्हीं राम के विषय में क्या कहा, राम राज्य पर बैठे हुए भी क्या कहते हैं, सारी सभा को एकत्रित करते हुए क्या कहा, जो अनित कछु भाखों भाई तो मोय वरजो भय विसराई, यदि मैं नीत से हटकर के कोई भी कार्य करता हूं, यथा नियम से हटकर के कोई भी कार्य करता हूं, तो जो है मुझे बगैर भय के आप जो है रोक सकते, और आजकल यदि ऐसा कह दो, यदि आक्षेप भी कर दो तो पिट जाओ है, और जो है बंद कर दो तुम पर ही उल्टे आरोप और आ जाएंगे। तो ये जब होता तब जाकर के वहां राम राज्य होता, तब वहां सुख होता। इसलिए ही ये जो आज का पर्व है इसको भी थोड़ा संकेत कर, पर्व क्या है, तो इतिहास ये भी कहता भगवान जब जो है अयोध्या में आ गए, राज्य पर बैठ गए, तब लोगों ने दीपावली मनाई, ये भी संकेत। कुछ कवियों ने ऐसी भी कल्पना की कि जब हम पराधीन थे तो उस पराधीनता से निवृत्त होने के लिए छायावादी रूप से हैं कविता लिखी, ऐसा भी संकेत किया। तो इस प्रकार से ये सब चर्चा की, लेकिन इसी के साथ साथ सारा संसार ही क्या है, गुलाम है, पराधीन है, उस पराधीनता से निवृत्त होने के लिए भी वो चर्चा की। और उसके लिए क्या कहा? तो कुछ लोग तो भजन गाते हैं, हमको गाना तो भाई नहीं आता है लेकिन भजन याद है, भजन देखो सुना दें आप। लोग क्या गाते हैं? कहने लगे, कहां जा रहा है ओ जाने वाले, अंधेरा है दिल में दिया तो जला ले। संकेत किया और आगे कहने लगे, ये जीवन सफर एक अंधा सफर है। और कहने लगे, इतना ही नहीं, क्या है? कहा, बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। संभलता नहीं दिल किसी के संभाले, कहां जा रहा है ओ जाने, अंधेरा है दिल में दिया तो अब वो अंधकार कहीं अन्यत्र नहीं है, वो कहां है? अब उसको तू जला लेगा तब तेरी यात्रा साफ होगी, नहीं तो भटक जाएगा, है बहक जाएगा। और संसार में यही तो हो रहा, क्योंकि ये जीवन का वहां भी संकेत किया, ये जीवन क्या है? एक यात्रा है। और इस यात्रा को करो, लेकिन कैसे करो? तो कहने लगे, दीपक जला करके, अर्थात बुद्धि के अंतर्गत ज्ञान को धारण करके, बुद्धि हमारी प्रकाशमय हो, ज्ञानमय हो, और फिर जब हम इस यात्रा को करेंगे तभी जो है हमारी यात्रा। और एक और संकेत किया, जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, जो गिरकर संभल जाए है जीत उसकी। जब तक जीवन में ठोकर नहीं आती तब तक इस संसार से हटकर के सोचने की इच्छा होती ही नहीं, सोचता ही नहीं कोई, संसार में ही रचा पचा रहता। सत्राजित ने भी कब विचार किया कि अब दे दो, भगवान तो पहले ही कह रहे कि मन मेरे को दे दे, मड़ी मेरे को दे दे, लेकिन भगवान भी गीता में कहते मन मेरे को दे दे, बुद्धि मेरे को दे दे, लेकिन हम लोग दे पाते नहीं। हम भी भगवान को मानते तो अपनी बुद्धि के अनुसार मानते, अपनी कल्पना के अनुसार मानते, भगवान जैसा है उसने बुद्धि को समर्पित कर देना, ये सब हमसे होता, ये कब होता? कहने ठोकर खा, तो जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी। और कहने लगे, ठोकर खाओगे तो गिरोगे, है? क्योंकि संसार का स्वभाव क्या है? फिसलना। और जहां फिसलन होगी तो वहां गिरना भी होगा। तो क्या कहा? कहने लगे, जो गिरकर संभल जाए है जीत उसकी। अब गिर तो गए, लेकिन गिर करके पड़े पड़े रोते रहो तो बात नहीं, क्या करना है?
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Shaivam.org in Aanmeega Anbargalukku Vanakkam. நீங்கள் அடுத்ததாக கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி சிவ கீர்த்தனைகள். பாடியிருப்பவர் பி கே பட்டம்மாள் அவர்கள். ஓம் நமச்சிவாய.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया।

दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के अंतर्गत पांचवें श्लोक की व्याख्या है। शंकराचार्य कहते हैं, देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलाम्

0: नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये। इस श्लोक में आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी यथार्थ तत्व के बारे में, कितने लोग भ्रांत हैं इस बात का उल्लेख करते हुए, और इनकी भ्रांति कब टूटेगी, कौन तोड़ेगा, भगवान दक्षिणामूर्ति गुरुमूर्ति भगवान दक्षिणामूर्ति शिव की जब कृपा होगी तभी इनकी भ्रांति टूटेगी, तब यथार्थ वस्तु का इनको बोध होगा, अन्यथा वास्तव में यथार्थ परमात्म तत्व का बोध नहीं हो रहा है और सभी भ्रांति के चलते अपनी ही अपनी वाद अपने अपने सिद्धांत का आलाप कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है। कौन कौन है इस प्रकार से परमात्मा के यथार्थ तत्व को न जानते हुए भ्रांति से अन्य वस्तु को यथार्थ तत्व मान रहे हैं? सबसे पहले देहात्मवादी चार्वाक सिद्धांत का संकेत किया है। सबसे पहले तो वो चार्वाक हैं, परमात्मा ने ही उनको जन्म दिया, परमात्मा ने ही उनको जीवन दिया, और उसी परमात्मा ने उनका मन दिया, बुद्धि दी, इंद्रियां दी, सारे साधनों से संपन्न बनाया, फिर भी उन साधनों का सदुपयोग न करके वे लोग वाक् चातुर्यता का प्रयोग करते हुए उस परमात्मा के स्मरण नहीं करते हैं, उसके प्रति उनकी बुद्धि नहीं जाती है, और स्वयं तो भ्रांत है ही हैं, अन्यथा को अन्यथा मान रहे हैं, साथ साथ ही अपनी संप्रदाय बढ़ाने के लिए अन्य को भी भ्रांत कर रहे हैं। इसलिए उनको उनके पीछे लगने वाले संख्या बहुत ज्यादा है। ये तब की बात नहीं है, आज भी, और आज तो और भी ज्यादा है उनकी मेजॉरिटी में उनके पीछे लगने वालों संप्रदाय, क्योंकि वे चार्वाक हैं, चार्वाक के जमाना है ये। सत्य एक तरफ होता है, कथन दूसरी तरफ होता है। ये तो जो जितने प्रबल तर्क और युक्ति से वाक् चातुर्यता से जो अपना पक्ष रख सकता है उसी का ही आज जमाना है, इसी को चार्वाक। आज सारा संसार चार्वाकियों का साम्राज्य भरा हुआ है। चार्वाक शब्द का दो व्युत्पत्ति किया, चारु वदती इति चारुवाक, बोलने में बड़ा चतुर है जो, अन्यथा नहीं लेना, कोई वकील होगा तो वो चार्वाक ही होगा है, इस अर्थ में, हाँ, इस व्युत्पत्ति से, अन्यथा नहीं लेना कोई वकील हो, हाँ, क्योंकि उसका पैसा ही चार्वाक है, उसका बिजनेस ही चार्वाक है, वो तो बोलने में कुशल नहीं होगा, चतुर नहीं होगा, तब वो वकील हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सामने वाले की वाणी को वह इस तरह किल देना है कि आगे वह अर्थबोध करने की क्षमता न हो, अन्य युक्तियों को लाने की क्षमता से रहित हो जाए, हाँ, वाक किलम, वाक वाणी को किलने वाला, हाँ, किल दिया, हाँ, अब उसके बुद्धि से उसके वाणी से उसके तर्क को काटने की युक्तियां बाहर नहीं निकल सकती है, हाँ, और क्योंकि वो बहुत युक्ति से बोलना पड़ता है उसको, चारुवाक यानी सुनने में बिल्कुल सत्य लगे और सुनने वालों को बहुत अच्छा भी लगे, चारुवाक। संसार तो उसी के पीछे है, इसी को वाक चातुर्य, इसी को चाटुकारिता भी बोलते हैं। बड़े के सामने छोटे लोग यही करते हैं, अरे आप तो साक्षात भगवान हैं, आपके आश्रय तो हम जी रहे हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे आश्रयदाता हैं, आप समस्त गुणों के खानी हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। मांगने वाला भी इस प्रकार के शब्द झड़ी लगाता है ना, जब तो सामने वाला व्यक्ति दिए बिना रहता ही नहीं है, उसके देने की इच्छा होती है, क्योंकि इस प्रकार के वह फ्रॉड शब्द झड़ी लगा रहा है फोकट में है। पहले के राजा लोग तो तनख्वाह देकर प्रशंसा करने के लिए आदमियों को नियुक्त करते थे, अब कम से कम वह इतने इतने शब्द प्रयोग कर रहा है तो एक रुपया तो दो, ज्यादा नहीं दस रुपया दो, आज तो एक रुपया का जमाने ही खत्म हो गया है, है ना? एक रुपया का तो जमाने ही खत्म हो गया। चार वाक इस विश्व में सबसे स्थूल दर्शन है, ये बहुत ही स्थूल दर्शन, देहात्मवादी चारवाक। चारवाक के आचार्य कौन है? चारवाक दर्शन के आचार्य प्रहलाद का पौत्र विरोचन, प्रहलाद का विरोचन है, नहीं पुत्र है, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, पौत्र तो बलि हो गया, पुत्र विरोचन है। बाप भगवान का परम भक्त और बेटा शरीर का परम भक्त, ले देखो कितना विपरीत है, देहात्मवादी बेटा हो गया, परमात्मवादी बाप हो गए। इसका कारण क्या है भाई, इतना फर्क क्यों पड़ गया? ये तो प्रहलाद जी को तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, सदगुरु प्राप्त हो गया मां के गर्भ के अंदर ही, प्रहलाद जी को तो मां के गर्भ के अंदर ही गुरु प्राप्त हुआ है, और इसीलिए गुरुमूर्ति दक्षिणा मूर्ति, भले ही उनको नारद कहो तुम, हम लोग नारद कहते हैं भले ही, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने ही उनको उपदेश किया था, लेकिन नारद के रूप में ही साक्षात दक्षिणामूर्ति भगवान शिव ही प्रहलाद को तत्व का उपदेश करने के लिए वहां पहुंच गए हैं। इसलिए हमारी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के दृष्टि से जितने भी गुरु हैं सभी दक्षिणामूर्ति हैं, और जितने भी दक्षिणामूर्ति रूप गुरु मूर्ति हैं वो साक्षात शिव का ही स्वरूप है, शिव से भिन्न नहीं है, वो केवल उपाधि अलग अलग हो सकता है, अलग अलग उपाधियों में वही शिव, अलग अलग नाम अलग अलग रूप में वही शिव, एक ही शिव गुरु मूर्ति के रूप में सबके सामने उपदेश करते हुए तत्व का ज्ञान देते हैं और भ्रांति का निवारण करते हैं। यहां उसी का स्मरण किया है, भ्रांतः वृषम्वादिना, ये सभी भ्रांत हैं, उनके भ्रांतियों का निवारण तो एकमात्र दक्षिणामूर्ति गुरु रूप दक्षिणामूर्ति कर सकते हैं। तो प्रहलाद जी को तो नारद जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए मां के गर्भ के अंदर रहते हुए ही, इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के वंशनाश करने के लिए हिरण्यकश्यपु की पत्नी को तयाधु को, जब प्रहलाद गर्भ में थे, हरण करके ले जा रहा था, बीच में नारद जी पहुंच गए, कहा कि अरे भाई क्या कर रहे हो, ये तो स्त्री को कहां लेके जा रहा हो? बोले इसके वंशनाश करना चाहता हूं हिरण्यकश्यपु के, क्योंकि इसके पेट में हिरण्यकश्यपु का वंशज है, बीज है, और ये जन्म लेते ही मैं मार डालूंगा, इसलिए लेके जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि गलत व्यक्ति को मारना कोई पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ तो यह है कि गलत व्यक्ति को सुधार सको, यही पुरुषार्थता है। यदि तुमने मार दिया गलत व्यक्ति को तो उससे क्या पुरुषार्थता हो गई? एक मारोगे दूसरा पैदा होगा, दूसरा मारोगे तीसरा पैदा होगा, तीसरा मारोगे चौथा पैदा होगा। लेकिन तुम एक गलत व्यक्ति को सुधारोगे तो वो सुधरा हुआ गलत व्यक्ति दूसरों को सुधारेगा, और तुम तो सुधारोगे सुधारोगे वह भी सुधारने के लग जाएगा, और वह जिसको सुधारेगा वह भी और को सुधारने लग जाएगा। इसीलिए यदि एक को सुधार सको तो इस सुधारने का क्रम इस तरह शाखा प्रतिशाखा न्याय से जाता रहेगा, बढ़ता रहेगा कि सारा समाज सुधर सकता है। तो नारद जी ने कहा इंद्र को, तो नाश करने की बात नहीं करना, सुधारने की बात करो। अरे हमने तो नाश करने के उद्देश्य से कयाधु को हरण करके लाए हैं, तो अब क्या करेंगे? तू सुधार नहीं सकता है तो मैं सुधारूंगा, छोड़ दे, मैं अपना आश्रम है जंगल में, पर्णकुटी है, वहीं रखूंगा, वहीं पालूंगा, जब पैदा होगा तो फिर ये सुधरा हुआ पैदा होगा, ये राक्षस होकर पैदा नहीं होगा, ये भगवान का परम भक्त होकर, संत होकर, गुरु मूर्ति होकर पैदा होगा। तो इंद्र ने छोड़ दिया, छोड़ दिया तो नारद जी ले गए अपने आश्रम में कयाधु को, और गर्भस्थ शिशु को सुधारने के लक्ष्य से ही कयाधु को सुनाते हुए दिव्याति दिव्य भगवत लीला, भगवत चर्चा, भगवत भक्ति, ज्ञान, योग, भक्ति सब का उपदेश करते हुए, परमात्मा में परम निष्ठा भाव को जगाते हुए उपदेश किया, लक्ष्य है गर्भस्थ शिशु को सुधारना, वंश सुधारना। आजकल जो है हाइब्रिड का जमाना आ रहा है, जहां देखो वहीं हाइब्रिड है। तो क्या है ये? बोले नस्ल सुधारने का है ना, मुझे लगता है यही है ना हाइब्रिड की जो जमाना, नस्ल सुधारने का। अच्छा उत्पादन हो, क्वालिटी के वस्तु उत्पादन हो, उस कहते हमने नस्ल सुधार ली। अरे मूर्खो, तुम अपने नस्ल बिगाड़ते जा रहे हो और अनाज की नस्ल सुधार रहे हो, वनस्पतियों की नस्ल सुधार रहे हो, और अपने नस्ल को सुधारने का तुमने क्या प्रयत्न किया? बोलो, विश्व ने कोई मिशन चलाया है मानवीय नस्ल सुधारने के लिए? है? चलाया है, जबकि विश्व एक ही पक्ष में लगा है कि मानव किस तरह बिगड़ जाए। ये जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनको तो मानव बिगड़े तभी उनको फायदा है, मानव सुधर जाए तो क्या फायदा है? इस बात को लेकर आजकल रामदेव जी खूब लगे हैं, है? रामदेव जी लगे हैं, लगे तो हैं, कितना सफल होते हैं देखते हैं, लगे हैं बेचारे। भारत स्वाभिमान बिगाड़ने वालों के विरोध में मोर्चा खोल लिए उन्होंने, चाहे वह घरेलू बिगड़ेल हो चाहे वैदेशिक बिगड़ेल हो, सब बिगाड़ने वाले बिगड़े हुए के विरोध में मोर्चा खोल लिया है। ईश्वर करे कि उनका मिशन सफल हो, है? लेकिन कितना होगा? तो नारद जी सफल हो गए अपने मिशन में। जब पैदा हुए प्रहलाद जी तो क्या परम भगवान के परम भक्त के रूप में पैदा हुए, और उनके तो परमात्मा भाव से अतिरिक्त और दूसरा भाव ही नहीं है, भगवान का परम भक्त हो गए। और उन्हीं के वंश में फिर पैदा हो गया विरोचन, प्रहलाद का बेटा विरोचन। अब यही प्रहलाद जी गलती कर गए कि अपने बच्चे को सुधार नहीं सके वो, जैसे हम लोग गलती करते जा रहे हैं, हम लोग खुद सत्संगी हो रहे हैं, बच्चों को सत्संग में प्रेरणा नहीं कर रहे हैं, हम खुद संतों और सब महात्माओं का, गुरुओं का आदर करते हैं और बच्चों को आदर करने की बात सिखा नहीं पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं हम। तो वही हाल प्रहलाद जी का हो गया है, खुद तो सुधर गए, राक्षस कुल से देव कुल में पहुंच गए वो, लेकिन अपनी जो प्रहलाद अपने ही बेटा विरोचन उसको नहीं सुधार सके। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है, अब विरोचन राज्य के योग्य हो गया है, तुम चलाओ राजपाट, अपने तो चलते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारे वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति है। ये संस्कृति और पाश्चात्य में ये वाक्य नहीं है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम वहां ये उपदेश नहीं दिया गया है। यौवने विषयिषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम ये उपदेश नहीं है वहां, और योगे नान्ते तनुत्यजाम इसकी तो और भी कल्पना ही छोड़ दो। जब वार्धक्य में मुनिवृत्ति नहीं है तब फिर योगे न अन्ते तनुत्यजाम ये बात कहां आएगी। वहां तो जन्म से मृत्यु तक केवल एक ही भावना है कि कैसे भोग विलास करें, कैसे कितनी क्षमता से भोग विलास करें, संसार के पदार्थों को भोग सकते हैं। आज परिणाम ये हो रहा है कि 10 वर्ष के बच्चे जो पूरी तरह ब्रह्मचर्य अवस्था में रहकर विद्या साधना में लगनी चाहिए, वे सब के सब गुंडे हो रहे हैं। माँ बाप रो रहे हैं उनके, तुमने क्या दिया उनके? प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है, बच्चे को सुधार तो नहीं सका लेकिन अपने को तो सुधार सकता हूं। दे दिया राजगद्दी और चले गए साधना करने, भगवत भक्ति में वार्धक्य मुनिवृत्ति को धारण कर लिया उन्होंने। और विरोचन, वो तो विरोचन ही है। तो हमने कई बार विरोचन शब्द का अर्थ किया है, बाहर के पदार्थों को रुचि पूर्वक देखने वाला जो व्यक्ति है उसी को विरोचन कहते हैं। तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मा। बाहर के पदार्थों को तो बड़े प्रेम से, बड़े रुचि से, बड़े चाव से, बड़ी आत्मीयता से देखता है। देखता है इतना ही नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए सारा प्रयत्न करता है। इंद्रियों से बाहर के पदार्थों को खोजने वाले व्यक्ति का नाम है विरोचन। और इंद्रियों से जो भी खोजेगा, यदि परमात्मा को भी इंद्रियों से खोजेगा, तो ये निश्चित समझ लेना कि वो विरोचन है। परमात्मा को ध्यान दे लेना, इंद्रियों से परमात्मा को जो खोजेगा, ये निश्चित समझ लेना कि वो विरोचन ही है। क्योंकि इंद्रियों से जो दिखाई देने वाला है वो दृश्य होगा, और जो दिखाई पड़ेगा वह दृश्य होगा। दृश्य जड़ होता है और जड़ अनात्मा होगा, परमात्मा तो होने की बात ही नहीं है। आंख से दिखाई देने वाला व्यक्ति या वस्तु आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा युष्मद पद का अर्थ है ही नहीं कि जो आंखों से दिखाई पड़े। आंखों से माला दिख रहा है, इस माले को हम हमेशा युष्मद कहते हैं, अस्मद नहीं कहेंगे। ये माला कभी भी मैं नहीं कह सकता है, न माला मैं कह सकता है, न मैं कह सकता हूं इस माला को लेकर। तो ये युष्मद है, यह है। और जो युष्मद है वह कभी भी अस्मद नहीं हो सकता है, और वो कभी इंद्रियों से, अस्मद इंद्रियों से नहीं दिखता।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.आर रेडियो, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, You are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Gananada Nayanar Puranam. Presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakto.
4: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Shankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: साधु वृत्तां, तीसरी विशेषता है साधु वृत्तां, सरल पद युताम का अर्थ होता है इन कविताओं में जो पद का प्रयोग किया मैंने वह क्लिष्ट व्याकरण के हिसाब से क्लिष्ट पदों का प्रयोग नहीं किया है। जैसे डुकरीकरण, ये पद क्या है? बहुत क्लिष्ट पद है। वैयाकरणियों के लिए ये डुकरे करने, ये पद बहुत क्लिष्ट पद है। बड़े बड़े विद्वानों के मथा चक्कर जाए ये डुकरे करने आदि आदि पद। लेकिन मैंने इन कविताओं में ऐसा कोई पदों का प्रयोग नहीं किया जिसका अर्थ समझने में मथा खपाना पड़े, आराम से सरल पदों का प्रयोग किया है। साधु वृत्तां, ये है छंद। वृत्त माने छंद। पहले अलंकार की बात हुई थी, सर्वालंकार, अब छंदों की बात आई। मैंने ये शिवानंद लहरी स्तोत्रम, साधु वृत्तम, अच्छे अच्छे छंदों के प्रयोग करके इसकी रचना की है। इसमें शिखरणी छंद है, उसका भी हमने प्रयोग किया है किसी श्लोकों में, और कुछ श्लोक फिर बसंत तिलका छंद है, कुछ श्लोक मालिनी छंद है, कुछ श्लोकों का हमने आर्य छंद में रचना की है, कुछ छंद को उपजाति छंद में, हमने श्लोकों को उपजाति छंद में रचना की है, और कुछ श्लोकें शार्दूल विकृत छंद में हमने रचना की है, कुछ शालिनी, कुछ मालिनी, ये छंद है। ये छंदों का नियम है, वो कोई भी श्लोक, कोई भी कविता रचना करो तो उनको ये छंद में आबद्ध होकर ही उसकी रचना करनी पड़ती है। कितने अक्षरों का एक लाइन में प्रयोग करना, कौन कौन गणों का प्रयोग करना, पहले कौन गण का प्रयोग करना, हाँ, य गण, म गण, ल गण, भ गण, ये छंदों में गणों का प्रयोग होता है। गणों के आधार पर दीर्घ कहां प्रयोग करना, ह्रस्व कहां प्रयोग करना, ये छंद रचना में ये बात पूरी तरह ख्याल रखी जाती है। तो जो काव्य रचना में छंदों का प्रयोग करने की विधि है, उसी विधि से मैंने इन कविताओं को रचना की है। उसको कहते हैं साधु वृत्तांत। अब उधर कन्या के रूप में साधु वृत्त माने स्वभाव, सरल स्वभाव की है। मेरी बेटी, आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि मेरी बेटी बहुत सरल स्वभाव की है। शंकराचार्य जी कहते मेरी कविता सरल स्वभाव की है। सद्विशंस्तूयमानम्। आप अपने बेटी की प्रशंसा करते करते यहां तक कह देते हो मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ती है, सभी टीचर उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, मास्टर लोग भी सब प्रशंसा करते हैं, हाँ? भले ही वह झंडा लेकर नहीं चलेगा नहीं चलेगा करती हो कॉलेज में है कि नहीं, बोलो। विद्यार्थी आंदोलन में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल की दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आंदोलन करते हैं ना। भले ही स्कूल में तूफान किया हो, कुर्सी उठाकर फेंक दिया हो, है? प्रिंसिपल के कमरे में ताला लगा दिया हो, आग लगा दी हो, लेकिन उसकी मां उसके पिता अपनी बेटी की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं, मेरी बेटी स्कूल में भी सभी इसकी प्रशंसा करते हैं, क्या अनुशासित है। आपको पता नहीं है तो देखो साधुवृत्ता अनुशासित का उसने सिल लेके आया।

कोई भी साधु को शिवानंद लहरी का इस श्लोक आप सुना दो, क्या कहना, वाह वाह वाह वाह, क्या सुंदर कविता है, ये कविता की प्रशंसा करते हैं। सरस गुण युताम कविता में रसों का प्रयोग होता है, काव्य में किसका प्रयोग होता है, रसों का, अलंकार छंद और रस, वात्सल्य रस, करुणा रस, वीर रस, विभत्स रस, उग्र रस, सौम्य रस, कविताओं के मैं ये रसों का भाव आना चाहिए। सेनाओं को कोई कविता सुनाने जाओ, उसमें करुणा रस वात्सल्य रस सुनाओगे तो सेना क्या करेगी, वो एक मच्छर को मारने में भी डरेगी, वो तो तुम्हारे देश के धर्म की रक्षा करेंगे, वहां तो तुमको कहना पड़ेगा हत्वा वा प्राप्स्य से स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्य से महिम, मारो लड़ो युद्ध करो, युद्ध करते करते तुम यदि मर गए तो तुम्हें सीधा स्वर्ग प्राप्त होगा, और जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। लड़ो, मारो, मरो, या मारो या मरो, जनी हटना, ये क्या है, वीर रस, इनके खून खौलने लग जाता है ये कविता सुनाते समय, तो वो पीछे हटेंगे। वात्सल्य रस, एक मां और बच्चे के भाव को व्यक्त करना होगा तो वीर रस का प्रयोग करना होगा, वह कविताओं में एक मां अपने बच्चे के प्रति क्या भाव व्यक्त करती है उसमें वात्सल्य रस का प्रयोग करना पड़ेगा। करुणा रस, कोई साधन संपन्न धनिक व्यक्ति किसी गरीब असहाय की सेवा करने लगा हो, उसके लिए प्रेरित करना होगा, तो वहां उस कविताओं में करुणा रस का प्रयोग करना पड़ेगा, और तुम उस कविता को पढ़ते पढ़ते उसका हृदय द्रवीभूत हो जाए, और देने की इच्छा न हो तो भी देने की इच्छा जग जाए, आदि आदि। कविताओं में, काव्यों में रस का प्रयोग होता है, श्रृंगार रस, समझे कि नहीं, वैराग्य रस। अब एक सन्यासी को श्रृंगार रस सुनाओगे तो क्या हाल होगा उसका, तुम्हारा लड़का शादी नहीं कर रहा हो तो श्रृंगार रस सुनाओ, तुम्हारी लड़की शादी नहीं कर रही हो तो श्रृंगार रस से भरे हुए कविताएं उसको खूब सुनाने शुरू करो। अब एक सन्यासी के पास जाकर श्रृंगार रस की कविता सुनाकर करोगे क्या, वहां तो जितना हो सके वैराग्य रस से भरे हुए कविता सुनाओ। गात्रम संकुचितम गतिर विगलितम भ्रष्टाच दंतावली दृष्टिर नश्यति वर्धते बधिरता गात्रम चलालायते वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनै भार्या न शुश्रूषते आकष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसा पुत्रोपि मित्रायते। वैराग्य रस से देख लो, ये बुढ़ौती का वर्णन कर दिया है, बुढ़ौती में ये सब चीज आने वाली है, इसलिए वैराग्य ही होना चाहिए। भोगा न भोक्ता वयमेव भुक्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो नहीं हत वयमेव याता। देख लो ये क्या है, वैराग्य रस। हम समझते थे कि हमने इतना भोगा इतना भोगा इतना भोगा, लेकिन ये भोग तो ज्यों के त्यों हैं, हम ही भोग द्वारा भोगे गए, हम कमजोर हो गए, वो तो ज्यों के त्यों हैं। हम समझते कि हमारी तृष्णा कमजोर हो गई, तृष्णा बूढ़ी हो गई, लेकिन तृष्णा

ना तो ज्यों के त्यों तरुणी हो रही है और हम ही बूढ़े हो गए। हमने सोचा कि हमने तो 80 साल निकाला, अरे 80 साल तुम्हारी कहां गई, तुम्हारा 80 साल गया, तुम्हारा गया, तुम घाटे में हो गए, तुम्हारा बैलेंस कम हो गया, कालो नहीं आता, हमने कहा काल को टाल दिया, अरे काल क्या टाल, काल हमको कहा गया। वैराग्य रस, ऐसे काव्यों में रस का प्रयोग होता है। शंकराचार्य जी कहते मैंने प्राय करके सभी रसों का इन कविताओं में प्रयोग किया है, वीर रस का भी, विभत्स रस का भी, वात्सल्य रस का भी, कारुण्य रस का भी, वैराग्य रस का भी, सब रसों का प्रयोग किया है। सरस गुणयुताम लक्षिताम लक्षणाढ्याम, दूसरी बात यह कि इन कविताओं के माध्यम से लक्ष्यार्थ को भी हमने, केवल वाच्यार्थ का प्रयोग नहीं किया है, कविता में वाच्यार्थ असंगत होने पर भी लक्ष्यार्थ सुसंगत है। उद्यत भाषा विशेषा उपगत विनयाम, उद्यत भाषा सुक्तियां बोलते हैं उसको, सुभाष, सुभाषित माने सुक्ति, अच्छे अच्छे दूसरों को सुनाने के लिए, अपने को मनन करने के लिए सुक्तियों का प्रयोग किया है। सुक्ति रत्न जैसे चमकते हैं वैसे ही सुक्ति, रत्न सुक्ति माने सीपी में ही मोती होता है, इसलिए सुक्ति नाम सीपी का, सीपी से उत्पन्न होने वाला मोती है उसकी जो चमक है, ऐसे सुवासित है इसमें। उपगत विनयाम द्योतमानार्थ रेखाम, लक्षणार्थ आप देख लो मेरी बेटी का हाथ का रेखा देखो, है सभी लक्षणों से युक्त है मेरी बेटी का रेखा, आयु की रेखा भी पूरी है, बीच में नहीं मरेगी। आयु रेखा आपको पता है कि नहीं, अपने हाथ में आयु रेखा होता है, दूसरे धन रेखा होता है, है? और तीसरा विद्या रेखा है, चौथा स्वास्थ्य रेखा है, रेखा सामुद्र विज्ञान, उसको सामुद्र विज्ञान बोलते हैं रेखा संबंधी, सब रेखा देखो तो हर रेखाएं एक से एक है, वाह क्या गजब की रेखा है इसके हाथ में। द्योतमानार्थ रेखां कल्याणी, हर हालत में ये बहुत ही कल्याणी शुभ लक्षणा है, सबका कल्याण करने वाली है। एक बार दिल्ली में कथा कर रहा था, एक माताजी आकर, पंजाबी माताजी थी, उसका एक बेटा था, शादी करने की बातचीत चल रही थी, तो मैं कथा करके खत्म करके कमरे में जाने लगा तो महाराज आपसे कुछ बात करनी है। हमने कहा ठीक है बोलो बैठो क्या कहना है, तो आगे बैठ के उसने पहले तो हमारी बड़ी प्रशंसा कर दी, आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत विद्वान हो, आप संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, बड़े पुरुष हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। तो हम भी मक्खा हो गए, भाई बढ़िया क्या प्रशंसा कर रही है, है? बोलो क्या कहना चाहती हो मां? बोले महाराज मेरे बेटे की शादी की तैयारी चल रही है, आप बताओ आने वाली बहू कैसी होगी। ये सब सच घटना है, मैं गप नहीं कर रहा हूं। उसने यही कहा कि आप बता दीजिए महाराज जो बहू आएगी कैसे आएगी,
अब उसने इतनी प्रशंसा की तो हम भी नाटक करने लगे। चपट आंखा बंद करके, आंख बंद करके थोड़ा ध्यान किया, ऐसे थोड़ी बोलना है। दो तीन मिनट के बाद आंख खोल के श्वास लंबे श्वास फेर कर, माता जी जैसे भी आएगी आपका कल्याण करने वाली आएगी, जो बहू आएगी आपके कल्याण करने वाली आएगी, महाराज सेवा करने वाली आएगी ना। आपने कहा सेवा करे चाहे झगड़ा करे, आपके कल्याण ही करेगी वो, हैं? आप समझ लेना, ध्यान देकर सुनना, चाहे सेवा करे चाहे झगड़ा करे वो आपके कल्याण करेगी वो। सो कैसे महाराज, सेवा करे तो ठीक है, झगड़ा करे तो हमारा कैसे कल्याण करेगी? तो हमने एक दृष्टांत दिया, सेवा करने वाली से झगड़ा करने वाली अच्छी होती है, दृष्टांत दिया। वह तुम्हारी खूब सेवा करेगी तो तुम्हें बहुत सुख होगा, सुख होगा तो तुम्हारा पुण्य क्षय होगा। बात समझ में आई कि नहीं तुम लोगों को, बोलो ये स्वीकार करोगे कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे पुण्य से वो बहू अच्छी आ रही है और तुम्हारे पुण्य के चलते ही वो तुम्हारी खूब सेवा कर रही है, और सेवा कर रही है इसलिए तुम्हें बड़ा सुख बड़ा आनंद आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा पुण्य क्षय हो रहा है, तुम्हारा जो अच्छा बैलेंस था वो माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा है ये, अच्छा बैलेंस तुम्हारा माइनस हो जाए, ये अच्छा है। अब यदि कोई बहू आए तुमसे झगड़ा करने वाली तो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप के चलते गलत बहू आती है झगड़ा करने वाली, और तुम्हारे पाप के चलते वो झगड़ा करेगी, झगड़ा करेगी तो तुमको दुख होगा, और दुख होगा तो पाप कटेगा। तो तुम्हारे जीवन के जो पाप कर्म है दोष है क्षय हो जाएंगे। तो कौन सा क्षय करना चाहते हो बोलो, पुण्य क्षय करना चाहते हो कि पाप क्षय करना चाहती हो बोलो, हैं? पाप क्षय हो ये चाहती हो तो तुम्हारी बहू दुष्ट आवे तो तुम्हारा पाप क्षय होगा, और तुम चाहती हो कि मेरा पुण्य क्षय हो तो अच्छी बहू आए। तो मैं तो जहां तक समझता हूं मेरा नौकर सेवा करने वाले के अपेक्षा झगड़ा करने वाले आए वो अच्छा है, क्योंकि मेरा पाप कटेगा। समझे कि नहीं? पाप कटना अच्छा है कि पुण्य कटना अच्छा है? पुण्य घटे और पाप बचा रहे ये तो अच्छा नहीं है, पाप कटे पुण्य बचा रहे, और पाप काटने के लिए तो झगड़ा करने वाली बहू आना पड़ेगा कि नहीं बोलो? अब स्वीकार करो, तुम्हारे बेटे की शादी हुई कि नहीं? हमने तो वेदांत की दृष्टि से समझा दिया उसको, उसको जचा कि नहीं भगवान जाने, जच तो आपको भी नहीं रहा है, हैं? जच तो आपको भी नहीं रहा है कि आप भी नहीं चाहोगे कि मेरी बहू झगड़ा करने वाली आवे, लेकिन है यही चीज, सत्य बात तो यही है, हैं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कल्याणी मेरी बहू, मेरी कविता हर हालत में कल्याणकारी है, जो भी इसको धारण करेगा, आप धारण करो चाहे हम धारण करें, इस कविता सबके कल्याण करने वाली है। इमाम कविता कन्याम त्वम गृहाणा, आपको अर्पण करता हूं महाराज। इदम ते युक्तम वा परम शिव कारुण्य जलधे, शिव के लिए संबोधन है, परम शिव कारुण्य जलधे संभो स्वामिन, हाँ? बहुत संबोधन है इसमें, एक ही श्लोक में, क्योंकि अंतिम श्लोक है इसलिए बहुत संबोधन है। कारुण्य जलधे माने करुणा का सागर,
परम शिवा महेश्वर शंभो कल्याणकारी स्वामिन सर्वस्वामी सबका स्वामी अभिभावक तौ हरिहरौ गतौ तीर्यग्रूपम तब पद शिरो दर्शन दिया, आपके पद और सिर चरण और मस्तक के दर्शन करने के लिए हरिहरौ गतौ हरिब्रह्माणौ गतौ हरिहर ने हरिब्रह्माणौ गतौ ब्रह्मा ऊपर की ओर गए मस्तक के दर्शन करने, विष्णु नीचे की ओर गए चरण के दर्शन करने के लिए। तीर्यक रूपम दोनों ने तीर्यक रूप धारण करके गए, ब्रह्मा पक्षी रूप धारण करके ऊपर गए, विष्णु पशु रूप धारण करके नीचे गए, दोनों तीर्यक योनि है, समझे कि नहीं? हाँ, आप अधय योनि है, वृक्ष ऊर्ध योनि है, पशु पक्षी तीर्यक योनि है। आप ऊपर से खाना खाते हैं तो सीधा नीचे जाता है, तो आप अधज स्रोत है। वृक्ष नीचे से पानी लेते हैं तो ऊपर जाता है, वृक्ष ऊर्ध स्रोत है। पशु पक्षी इधर से लेते हैं तो इधर जाता है, तिरछा तीर्यक स्रोत है, है ना? तो ऊर्ध स्रोत अधस्रोत तीर्यक स्रोत, ये जीवों के वर्गीकरण है। ब्रह्मा और विष्णु ने तीर्यक योनि को प्राप्त किया, पक्षी भी तीर्यक है, पशु भी सुअर भी तीर्यक योनि है। किसके लिए उन्होंने ये योनि धारण किया? तो बोले विष्णु ने आपके चरण पता लगाने के लिए धारण किया, दर्शन करने के लिए, ब्रह्मा ने मस्तक का दर्शन करने के लिए। इदं ते युक्तं वा परम शिव कारुण्य जलधे गतौ तीर्यग्रूपं तव पद शिरो दर्शन धिया हरि ब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि। ब्रह्मा ऊपर की तरफ दिवलोक की तरफ गए, सत्य ब्रह्मलोक तक गए, और विष्णु भुवि पाताल की तरफ पाताल तक पहुंचे। चरंतौ श्रमयुतौ विचरण करते करते थक गए, श्रमयुतौ चरंतौ, लेकिन आपको आपका दर्शन उनको नहीं हो पाया, थक गए लेकिन आप उनके सामने प्रकट नहीं हुए। कथम शंभो स्वामिन कथय मम वेद्योऽसि पुरत। यहां द्व्यर्थक लाइन है कविता कि उन लोगों को भी आपका ठीक से दर्शन नहीं हुआ तो फिर मुझे कैसे दर्शन होगा, ये भी अर्थ है। दूसरा अर्थ है, महाराज इतना श्रम करने पर भी उनको दर्शन नहीं हुआ और आपकी ऐसी कृपा हुई, कथम, मैंने कोई परिश्रम ही नहीं की, यहीं बैठा हो रहे हैं बैठे बैठे ही, वेद्योऽसि पुरत, आप तो मेरे आगे ही खड़े हो गए, देख लो, न मैं पशु रूप धारण करके पाताल में गया, न पक्षी रूप धारण करके दिवलोक गया, न कहीं भटका, न कुछ, यहीं बैठे बैठे मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं और आप सीधे ही दर्शन देने के लिए यहां आ गए, ये कैसे आ गए मैं आश्चर्य हो रहा हूं। चलो, ये आपकी बड़ी कृपा है। और वहां पर भी शिव महिमनि स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने इसी प्रसंग के साथ कह दिया है, स्वयं तस्थे ताभ्याम तब अनुवृत्तिम किम न फलती, पुष्पद महिमनि स्तोत्र में,
ब्रह्मा और विष्णु के सामने ही भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम घमंड छोड़ो, अभिमान छोड़ो, मैं बड़ा हूं, ये घमंड छोड़ो। दुनिया में परमात्मा बड़ा है, परमात्मा से बढ़कर और कोई दूसरा बड़ा नहीं। तुम हम सब के सब उस परमात्मा के ही अंश हैं, अंग हैं, सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, उसी का जप करते हुए, उसी को समर्पण होकर, अभिमान रहित ब्रह्मा तुम सृष्टि करो, विष्णु तुम पालन करो, कर्ता भाव रहित, अभिमान रहित होकर सृष्टि और पालन करोगे तो सृष्टि करते समय में वैषम्य सृष्टि करने का दोष तुमको नहीं लगेगा, पालन करते समय में वैषम्य रक्षा पालन करने का दोष भी तुमको नहीं लगेगा। अन्यथा अभिमान पूर्वक सृष्टि करोगे तो वैषम्य सृष्टि का दोष तुमको लगेगा, और अभिमान पूर्वक पालन करोगे तो वैषम्य रक्षा करने का पालन करने का दोष तुमको लगेगा। इसलिए बस अभिमान रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से सृष्टि और पालन करो, इसी में तुम्हारा हमारा सबका कल्याण है। तो शंकराचार्य जी ने इस तरह भगवान शिव के स्वयं आगे उपस्थित होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि महाराज, ब्रह्मा विष्णु को इतना परिश्रम करने पर भी आपने दर्शन नहीं दिया और मुझे एक सन्यासी के सामने आप इतनी आराम से खड़े हो गए हो। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। एक श्लोक है क्या? ओ अच्छा अच्छा, हाँ। स्त्रोत्रेणालमहं प्रवच्मि न मृषा। शंकराचार्य जी कहते हैं, स्तोत्रेण अलम अहम, अब स्तुति में नहीं कर सकता, अलम, हाँ बस, स्तोत्रेण अलम अहम प्रवच्मि न मृषा देवा विरिंचादया। देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु आदि स्तुत्या नाम, संसार में बहुत स्तुति स्तुत्य व्यक्ति हैं, लोग ब्रह्मा की भी स्तुति करते हैं, विष्णु की भी स्तुति करते हैं, इंद्र की भी स्तुति करते हैं, स्तुत्यों की गणना करते हैं तो बहुत लोग हैं इस संसार में, समझे कि नहीं? गणना प्रसंग समय, लेकिन मेरी दृष्टि में तो स्तुतियों की गणना करने के प्रसंग में भले ही लोग कुछ भी कहें, मेरे दृष्टि में तुम अग्रगण्यम विदुः, आप पहले नंबर के स्तुत्य हैं, उसके बाद विष्णु ब्रह्मा इंद्र कुबेर वरुण सब होंगे, हैं स्तुत्य तो बहुत हैं, लेकिन आप तुम अग्रगण्यम। बड़ा ही सुंदर उपमा दिया है, महात्म्याग्र महात्म्याग्र विचारण प्रकरणे धाना तुषस्तोमवत। अब इन स्तुतियों के महात्म्य कौन कितने महिमा वाला है, महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के जब विचार करने लगते हैं तो महाराज मैं सत्य कहता हूं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि जितने भी हैं वो सब तो धान के ऊपर जो तुष है, छिलका है, उसकी तरह सिद्ध होकर फेंके जाते हैं और आप ही चावल की तरह सिद्ध होकर हैं, आप चावल की तरह सिद्ध होते हैं और ये सब भूसे की तरह, गुजराती भूसा नहीं हो, गुजराती में खाते हैं ना भूसा, हाँ। महात्म्याग्र विचारण प्रकरणे धाना तुषस्तोषम तोमवत धूतास्तम विदु उत्तमोत्तम फलम। सब लोग तो उड़ के चले जाते हैं, खेत में जब किसान खेती करता है, फसल को झाड़ता है,
तो उस अनाज में कचरा जो होते हैं ना, तो उसको उड़ाने के लिए एक पक्का करता है या ऊपर उठा के ऐसे ऐसे करता है या मशीन लगाता है, हवा से उड़ाने शुरू करता है, तो वो सब उड़ जाते हैं। कौन? जिसके अंदर दाने नहीं है, भूसा और दाना नहीं है, ऐसे सबको उड़ के चले जाए। और जिसके अंदर दाने हों वो उड़ के उड़ नहीं सकते। तो ये जितने भी स्तुत्य हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब के सब को एक ही उसमें मिलाकर जब उड़ाने लगते हैं, ये सब उड़ के चले जाते हैं, आप एक बचते हैं दाने की तरह। महात्म्याग्र विचारण प्रकरणे दाना सुसास्तोमवत दूतास्तम विधु उत्तम उत्तम फलम। उस अनाज में जो ठोस उत्तम फल है वो नीचे बैठ जाता है, बाकी सब उड़ के चले जाते हैं। हे शंभो भवत सेवकाहा, मैं आपकी सेवक हूं और आप ही मेरे सेव्य हैं। आपसे बढ़कर और दुनिया में कोई सेव्य नहीं, आपसे बढ़कर को दुनिया में कोई स्तुत्य नहीं। इस भाव से शंकराचार्य जी ने अपनी कविता को भगवान शिव के चरणों में समर्पण किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः।

0: நமஸ் சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நமஸ் சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிம்னா ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ தர்மானந்த்ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண. स्वामी जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं, स्वामी जी का अभिनंदन करते हैं. स्वामी जी ने बहुत बड़ी कृपा की. आज से पूज्य संतोषी माता जी का प्रवचन होने वाला था, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने से वो नहीं आ सकी. स्वामी जी ने इस संकट के समय में यहां पधारकर हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, और स्वामी जी हमें भगवान शंकर के महिमा स्तोत्र के ऊपर प्रवचन करेंगे, और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपने प्रवचन के द्वारा हमें वे भगवान शंकर की महिमा बताएं. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से स्वामी जी का स्वागत करता हूं.
3: ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये श्यामि प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोः

स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम पुरी जी महाराज की। भगवान विश्वनाथ के अनुकंपा से लगभग 2003 से 6 वर्षों से स्वाध्याय कराने का अवसर उपलब्ध होता रहा है और हर वर्ष कोई न कोई या तो अस्वस्थ हो जाता रहा या जो है नहीं आ पाया। एक वर्ष छोड़कर 5 वर्ष प्रवचन भी करना पड़ता और स्वाध्याय तो खैर करना ही पड़ता है, जैसी भगवान की इच्छा। हाँ, 2 महीना स्वाध्याय, शायद 22 दिन प्रवचन भी था, 1 वर्ष शायद नहीं था प्रवचन, केवल स्वाध्याय। तो आइए विचार करते हैं शिव महिमा के ऊपर। सर्वप्रथम यह विचारणीय विषय है कि मनुष्य जीवन में परमोपयोगी ऐसी कौन सी चीज है जिसको पाने के लिए हम सभी लालायित रहते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो आनंद को न चाहता, सभी आनंद के जिज्ञासु हैं। बचपना से प्रारंभ करके बुढ़ापे तक हम आनंद को ढूंढते हैं। आनंद को ढूंढते ढूंढते मौत के गाल में समा जाते हैं, फिर भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाते। वास्तव में आनंद है क्या चीज? वेदांत की भाषा में उसको सच्चिदा आनंद कहते हैं। सच्चित आनंद उस परमात्मा का अपना स्वरूप है। जैसे अग्नि का स्वरूप है लौहित्य, शुक्लता और दाहकता, प्रकाश करना और जलाना अग्नि का स्वाभाविक अपना स्वरूप है। इसी प्रकार से परमात्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जो परमात्मा है वही जीव है। पर अनादि काल से अविद्या के कारण इस संसार में भटक रहा है और भटक करके अपने आनंद स्वरूपता को भूलकर संसार में ही विषयों में आनंद को ढूंढता रहता है। ढूंढते ढूंढते थक जाता है, इंद्रियां जवाब दे देती हैं, क्योंकि श्रुति कहती है नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस आनंद को उपलब्ध होने के लिए, अशेष समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, जिसको मोक्ष कहते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। एक में वह अद्वितीय रास्ता है जिसको हम भगवत प्राप्ति का रास्ता कहते हैं। लोग समझते हैं कि भगवत प्राप्ति में काल की अपेक्षा है, बहुत लंबा समय लगता है। जैसे कि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में एक समय की अपेक्षा होती है, विद्यार्थी पढ़ता है तो उसके पढ़ने में समय की अपेक्षा होती है, परंतु भगवत प्राप्ति में काल की अपेक्षा नहीं, अपितु भावना की तीव्रता अपेक्षित है। यदि हमारी तीव्र भावना है तो भगवान तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। भगवान शब्द का अर्थ सच्चित आनंद, जिसको आप बचपन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसको आप द्रव्यों में, पदार्थों में, पुस्तकों में, संसार में ढूंढ रहे हैं। पति पत्नी में ढूंढता है, पत्नी पति में, और माता पिता बच्चों में ढूंढते हैं, वही आनंद स्वरूप को हम यहाँ पर भगवान सबसे अभिलापन करते हैं। तो उसको यदि पाना है तो भावना की तीव्रता अपेक्षित है। अगर भावना में तीव्रता है तो परमेश्वर की प्राप्ति में विलंब नहीं होता है। एक बार देवर्षि नारद जी कहीं घूमते हुए जा रहे थे, उन्होंने एक जगह देखा एक महात्मा कठिन तपस्या कर रहे हैं। नारद जी ने कहा
तपस्वी, मैं वैकुंठ लोक को जा रहा हूं, तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझे पूछ लो। तपस्वी ने कहा, आप भगवान के बहुत प्रिय हैं, आप जाकर वैकुंठनाथ से पूछना कि मुझ पर कृपा कब करेंगे, उनकी दर्शन कब होगी। नारद जी आगे बढ़े, थोड़े दूर गए कि दूसरा तपस्वी भी तपस्या कर रहा था, उससे भी नारद जी ने कहा कि भाई मैं वैकुंठ लोक जा रहा हूं, तुझे कुछ भगवान से पूछना है तो बता। तपस्वी ने कहा कि कृपा करके आप भगवान से पूछना कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा, तथास्तु, कोई बात नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा। नारद जी वैकुंठ लोक पहुंचे, वहां जाकर भगवान से पूछा कि जो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्वी तपस्या कर रहा, उस पर आपकी कृपा कब होगी। भगवान ने कहा कि जाकर उसको कहना कि 7 जन्म के बाद मेरा दर्शन होगा। नारद जी ने कहा कि दूसरा तपस्वी जो इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा, उसको आप दर्शन कब देंगे। भगवान ने कहा कि उसको बोलना, इमली के पेड़ में इतने पत्ते हैं, उतने जन्म के बाद मेरा दर्शन होगा। नारद जी दोनों के समाचार को सुन करके समयानुसार पृथ्वी लोक में आते हैं। तपस्वी को बतलाया कि भगवान ने कहा है तुझे 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। तपस्वी ने कहा, 7 जन्म, आपने क्या कहा, और 7 जन्म अभी लेने पड़ेंगे। नारद जी ने कहा, भगवान ने ऐसा ही कहा है, बस जो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्वी था तत्काल उठ खड़ा हुआ, लगा गाली देने कि तेरा भगवान बेकार, तू बेकार, भगवान की भक्ति बेकार, इससे बढ़िया मौज से संसार में हम खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। वहीं पर गाली देके भगा चला संसार में। नारद जी सोचे, जब इसको हमने कहा तो ये 7 जन्म लगेंगे, तो इसने तो इतनी गाली बकी, अच्छा हुआ कि कम से कम प्रहार नहीं किया। अब दूसरे के पास जाएंगे उसको बोलेंगे तो वो तो जरूर मारेगा। अब बेचारे सावधानी से गए, सावधान होकर दूसरे के पास गए, सोचते विचारते, वादा किया है तो जाना ही पड़ेगा। इमली के पेड़ के नीचे जो तपस्वी तपस्या कर रहा था उसके पास पहुंचकर और उसको भी बताया, बड़ा सत्कार किया, स्वागत किया। इसके बाद तपस्वी ने पूछा कि आप हमारे विषय में पूछे हैं, भगवान ने क्या आज्ञा दी है। नारद जी तुरंत खड़े हो गए। तपस्वी ने कहा, खड़े क्यों हो रहे। बोले, जरा जल्दी जाना है, कुछ काम है, मैं सोचा तुम्हें बताते चलूंगा। तपस्वी ने सोचा कि इतनी तत्परता। बोले, ठीक है प्रभु, कम से कम बता दीजिए क्या समाचार है। नारद जी ने कहा कि भगवान ने कही है कि इस पेड़ में इतने पत्ते हैं, उतने जन्म के बाद हमारा दर्शन होगा। तपस्वी तुरंत उठा, नारद जी बिल्कुल भगने के लिए तत्पर। तपस्वी ने कहा, महाराज ठहरो तो सही, इतना तत्परता क्यों दिखा रहे, क्यों भाग रहे। बस उठकर नाचने लगा, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, हद हो गई। उसने कहा कि भगवान ने कम से कम सीमा तो बांध दिया, अनेक जन्म से हम संसार में भटक रहे हैं, कोई इसकी सीमा नहीं है, तो आज भगवान की बड़ी कृपा हुई कि इमली के पेड़ में इतने पत्ते उतने जीवन के बाद दर्शन देंगे। बस पत्ते आए गए, क्या समय लगता है, बहुत खुश हुआ। तो हम लोग भी जरा भगवान की स्मरण कर लें, जैसा तपस्वी ने किया था, श्रीमन नारायण ले नारायण ले नारायण ले, भजमन नारायण ले नारायण ले नारायण ले।

0: नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण उस तपस्वी ने भगवान के भजन में विभोर हो गया, भाव भर आया। नारद जी ने सोचा, एक तपस्वी को हमने कहा 7 जन्म लेने पड़ेंगे, वो घबरा गया। दूसरे तपस्वी को हमने कही, इस इमली के पेड़ में इतने पत्ते हैं, उतने जन्म के बाद भगवान दर्शन देंगे, यह भाव विभोर होकर नाचने लगा। नारद जी वही खड़े होकर देखने लग गए, इतने भगवान ने दर्शन दिया। नारद ने कहा कि हद हो गई, मुझे भगवान ने झूठा बना दिया। नारद जी ने कहा कि भगवान, पहले आप मेरे शंका का समाधान कीजिए। आपने कही थी कि इमली के पेड़ के पत्ते जितने हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, आप तत्काल दर्शन दे दिए। भगवान ने कहा, देखो नारद, भगवत दर्शन में काल की अपेक्षा नहीं, भावना की तीव्रता अपेक्षित है। इसकी भावना इतनी तीव्र हो गई कि हमें तत्काल दर्शन देना ही पड़ा। पूरा ब्रह्मांड काल के अधीन है, परंतु त्रैकाल अवाध्यत्वम एक परमात्मा ही है, जिसमें काल की कोई मर्यादा नहीं, काल की कोई सीमा नहीं। इसलिए भगवान को अकाल पुरुष भी कहते हैं, कालो काल महाकाल पुरुष भी कहते हैं। तो हमारी तीव्रता होगी तो भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं होगा। और सभी भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो भगवान का दर्शन सच्चित आनंद को उपलब्ध होना नहीं चाहता है। परंतु इसमें बड़ी अड़चन है, हम लोग भगवत प्राप्ति में भी सुविधा ढूंढते हैं। सुविधा वही ढूंढता है इसे आनंद प्राप्त नहीं होता है। जब आप कोई व्यापार करते हैं, काम धंधा करते हैं, तो वहां पर आप सुविधा दुविधा कुछ नहीं देखते हैं। आपका लक्ष्य है पैसे कमाना, बस उसी में लगे रहते हैं। रात्रि के 12 बज गए फिर भी दुकान खुली रहती है। इसी प्रकार से जैसे धन की प्राप्ति में तत्परता होती है, ऐसी भगवत प्राप्ति में तत्परता हो तो भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं होता है। भगवत प्राप्ति सभी का, भगवान की प्राप्ति की जो साधन है उसमें आनंद है। जैसे कोई बद्री विशाल यहां से चले, मालूम पड़ा 300 किलोमीटर है, वह जब किलोमीटर को लिखा हुआ देखता है, अब केवल 200 रह गए, अब 100 रह गए, 50 रह गए, 25 रह गए, 10 रह गया, 8 रह गया, बहुत खुश होता है, मैं बहुत नजदीक पहुंच गया। ऐसे ही साधन करने वाले को भी तीव्रता से मन में प्रसन्नता होती है, और तीव्रता तभी आएगी जब हमारे मन में विषयों से वैराग्य होगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वैराग्यस्य फलम बोधः, वैराग्य का फल है आत्मज्ञान। विषया शक्ति भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा प्रतिबंधक है, क्योंकि मन हमारा एक है। जब हमारा मन विषय का चिंतन करता है, तो हम जब भगवान का चिंतन करते हैं, तब भी उसमें भी हमारा मन विषयों की तरफ लगा हुआ होता है। विषय से कलुषित मन भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसलिए श्रुति कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। एक श्रुति ने कह दिया कि मन वाणी का विषय नहीं परमात्मा, इसके विपरीत दूसरी श्रुति कहती है, मनसैव अनुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। दो श्रुतियां कहती हैं कि मन के द्वारा ही साक्षात्कार होता है, शुद्ध बुद्धि का ही परमात्मा विषय है। तो जहां पर यह बात कही गई कि मन वाणी का विषय नहीं, उसका तात्पर्य है कि विषय से कलुषित, वासनाओं से दूषित जो हमारे नेत्र हैं, या अंतःकरण, उनसे उसका साक्षात्कार संभव है। जब हमारे अंतःकरण इंद्रियां भगवान के भजन से निर्मल हो जाते हैं तो इसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए कह दिया कि दृश्यते त्वग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, और इसके लिए उपासना साधना अनुष्ठान करना पड़ता है। यदि ब्रह्म उपासना अनुष्ठान साधना का विषय नहीं होता तो वेदांत में इतनी उपासनाओं की चर्चा नहीं आती। ब्रह्म निर्विशेष है, किसी साधन का विषय नहीं है, फिर भी साधन की अपेक्षा अविद्या के नाश में है, अंतःकरण के पवित्रता में। जो हमारे अंतःकरण के तीन दोष हैं, मल विक्षेप आवरण, मल दोष की निवृत्ति निष्काम कर्म से होती है और विक्षेप की निवृत्ति उपासना साधना अनुष्ठान से होती है, और अविद्या का नाश आवरण भंग ज्ञान से होता है। जैसे किसी बर्तन में जल रखा हुआ है, जल में सूर्य का प्रतिबिंब तो पड़ रहा परंतु साफ नहीं, साफ नहीं है तो आप जल में फिटकरी घुमाते हैं, फिटकरी घुमाने से मैल नीचे बैठ जाता है, इसके बाद भी हिलता जुलता जल तो आप चारों तरफ से घेर देते हैं ताकि हवा न लगे, उससे विक्षेप हिलना डुलना बंद हो जाता है। जब हिलना डुलना बंद हो जाता है तो तत्काल सूर्य का प्रतिफलन पड़ता है। ऐसी हमारे अंतःकरण में जो मन विक्षेप दोष है, इनको दूर करने का साधन है निष्काम कर्म सेवा, और विक्षेप के लिए उपासना साधना करना पड़ता है, क्योंकि विक्षिप्त मन के द्वारा तत्व का साक्षात्कार असंभव है। इस कांच सुने दूसरे कांच निकल जाएगा, मन विक्षिप्त होगा तो। इसलिए कहते हैं अन्यत्र मनाभुवम ना श्रोषम, सुनते हुए भी सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा मन विक्षिप्त होता है। इसलिए विक्षेप की निवृत्ति के लिए उपासना की अपेक्षा होती है। यहाँ शिव महिमन बड़ा सुंदर शिव की महिमा का वर्णन किया है। यहाँ शंका होती होगी यहाँ शिव स्तोत्र क्यों नहीं लिखा, जैसे विष्णु स्तोत्र, कृष्ण स्तोत्र, देवी स्तोत्र, वैसे शिव स्तोत्र इसका नाम नहीं रखा, शिव महिम ने स्तोत्र रखा। इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि शिव साक्षात जो निर्गुण निराकार तत्व है, चैतन्य है, जो ब्रह्म है, वह मन वाणी का विषय नहीं, स्तोत्र की पहुंच वहां होती है जो हमारे वाणी का शब्द का विषय होता है। सगुण साकार जो भगवान के अवतार हैं, वे तो मन वाणी के विषय हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार है, उनके एक आकार है, प्रकार है, त्रिभंग ललित है, तो मन वाणी का विषय होने से कृष्ण स्तोत्र कहते हैं। देवी का भी सगुण साकार स्वरूप है, भगवान विष्णु का भी, तो वहां पर तो यह कथन संभव है, विष्णु स्तोत्र, देवी स्तोत्र, कृष्ण स्तोत्र, राम स्तोत्र, परंतु भगवान शिव अजन्मा है, निर्गुण निराकार है, इसीलिए पुष्पदंताचार्य जी ने बड़ा सोचकर इसका नाम रखा शिव महिमना, शिव की महिमा, विभूति ऐश्वर्य। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कही है मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। यहां माम शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया है कि भगवान की विभूति, क्योंकि भगवत तत्व का वर्णन मन वाणी से संभव, इसलिए कह दिया कि भगवान की जो विभूतियां हैं, ऐश्वर्य हैं, उनके गुण लीला है, उसकी महिमा की जा सकती है। इसलिए यहां पर कवि ने शिव महिमना स्तोत्र इस ग्रंथ का नाम दिया। यहां शिव स्तोत्र न लिखकर शिव महिमा ही रहस्य लिखने का है। और महिमा सुनने के बाद स्वतः सुनने वाले की उधर प्रवृत्ति होती है। जैसे योग दर्शन में महिमा बतला दिया कंठ कूपे संयमात सुत पिपासा निवृत्ति, कंठ कूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है, प्राणपान का संयम करने से आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे रिद्धियों सिद्धियों की बात सुनते हैं तत्काल आसन प्राणायाम में प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे आजकल वर्तमान युग में टेलीविजन में आप एडवर्टाइज देखते हैं, प्रचार तरह तरह के, प्रायः देखा जाए तो 70% तो प्रचार ही प्रचार होते हैं। हर बात में प्रचार, हर बात में प्रचार। उस प्रचार को बार बार सुनते सुनते देखते देखते, और रेडियो से भी सुनते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, तीन तीन साधन है, सुनने का भी है, देखने का भी है, पढ़ने का भी है। तो जो व्यक्ति उस जिस चीज को लेना नहीं चाहता वह अभी कहता है एक बार लेकर देख लो तो सही, क्या है, नया मॉडल है, नई चीज है। तो इतनी महिमा का गुणगान टेलीविजन रेडियो के द्वारा हो रहा है, उस महिमा को सुनने के बाद अनायास प्रवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान शिव की महिमा सुनने के बाद उपासक उधर प्रवृत्ति हो जाए, इसलिए यहाँ पर शिव जी की महिमा यहाँ गाई गई है। तो महिमा वही व्यक्ति कह सकता है जो महिमा के विषय में जानता है। आजकल ऐसा भी होता है ना, कुछ भी नहीं जानते फिर भी 10-20 वाक्य लोग कंठ कर लेते हैं, और वही वाक्य सबके विषय में बोलते हैं। आप बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे समाज सुधारक हैं, चाहे उसके महिमा घटे या ना घटे, पर रटे रटाए शब्दों को बोल देते हैं। कोई दूसरा आक्षेप करे कि ये आपने जो बात कही वह तो उनमें घटती नहीं, तो जवाब देता है कि बड़े लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं, सब एक तरह होते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसे नहीं। पुष्प दंताचार्य जी ने भगवान शिव की महिमा का साक्षात्कार करके तब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जिस बात को खुद आप नहीं समझ रहे हैं उस बात को कहने से दूसरा कैसे समझेगा। जब आप भजन करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं या कुछ अनुष्ठान करते हैं, उसके रहस्य को जब खुद नहीं समझेंगे तो दूसरा कैसे समझेगा। परंतु हमारे भगवान जो है ना, बिल्कुल उनको होश रहता, इंसान बेहोश हो जाए, मन कहीं और वाणी कुछ और बोल रही हो, जैसे अजामिल मन से अपने बेटे जिसका नाम था नारायण उसका स्मरण कर रहा था, मौत के भय से अपने बेटे का नारायण नाम पुकार रहा था। पर भगवान को पता है कि नारायण हमारा नाम है, उसके बेटे का नाम तो बाद में पड़ा भी पड़ा और थोड़े दिन के लिए है। तो देखो, चाहे आप समझ करके न समझ करके, जान करके न जान कर, चाहे भाव कुभाव जैसे भी भगवान के महिमा गुणगान करेंगे, नाम लेंगे, तो निश्चित ही भगवान दर्शन देंगे, क्योंकि चैतन्य उसका नाम है। चैतन्य मतलब हमेशा चैतन्यता बनी रहती है। मनुष्य के चैतन्यता में विक्षेप आता है, प्रतिबंधक आते हैं, विषय चिंतन से मन डवाडोल हो जाता है, परंतु जो चैतन्य है, ब्रह्म है, आप उसका जैसे भी स्मरण करें, स्तोत्र पाठ करें, वो हमेशा सावधान रहता है, श्रवण करता है, इसीलिए जैसे भी करे उसमें फायदा ही है। अब शिव महिमन के विषय में एक गाथा प्रसिद्ध है, इसको भी सुना दें आप लोगों को। पुष्प दंताचार्य जी इसके आचार्य हैं, बनाने वाले हैं, शिखंडी छंद है और भगवान शंकर इसके देवता हैं। जब किसी मंत्र का जप करें, स्तोत्र का पाठ करें, तो सामान्य नियम है छंद देवता आचार्य का स्मरण होना चाहिए। इसका शिखंडी छंद है। शिखंडी छंद की परिभाषा है, रसई रुद्रई छिन्ना यम न सभलाग शिखरिणी। रसई बोलते हैं षट रस, रुद्र होते हैं 11।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Bhakti Shakshanta Vasal Mai Mata Vashne Mai Veno Aap Sarvandhu. To Prasang Mangala Chara Sambandhi Chal Raha Hai. Jiske Antargat Rishi Sanket Karta Hai. Lekin Yahan Rishi Kaun Hai? To Jinhone Bhashyakar Ke Us Bhashy Ki Hindi Tika Ki Hai. ऐसे वह ऋषि मंगलाचरण करते हुए संकेत उन्होंने किया कि पूर्व में जो ऋषियों ने चर्चा की या जो सिद्धांत बतलाया और जिसको पदवाक्य प्रमाण से पुरस्कृत करते हुए और उन्होंने उसकी चर्चा की, ऐसे उन समस्त ऋषियों को मैं नमस्कार करता हूं। और वो चर्चा जो की है वो क्या है, तो जिसमें समस्त शास्त्रों का जो अंतिम सिद्धांत है, जिसे वेदांत शब्द से कहा जाता है, ऐसे उस वेदांत की ही उन्होंने व्याख्या की, ये चर्चा की। तो वेदांत को लेकर के ही हम लोग उसको जीवन में कैसे समझें, तो समस्त श्रुतियों में आप देखते हैं ओम को उठा करके उसकी मात्राओं को लेकर के जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से उसका साम्य मिलाते हुए और इसी प्रकार से विश्व तेजस प्राग्ञ आदि से साम्य मिलाते हुए और वैसे ही विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर आदि से साम्य उन मात्राओं का मिलाते हुए जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से साम्य मिलाते हुए और उन्होंने उसमें प्रमाण देते हुए और उसकी व्याख्या और सिद्धांत को हमको बतलाया। हमारे पुराणों के अंतर्गत भी इस स्थिति को निर्वचित किया गया, अर्थात उसको बतलाया गया। संकेत थोड़ा हमने किया था कि भागवत के अंतर्गत यह जो उपनिषद कृत सिद्धांत है, उस सिद्धांत को ही समझाने के लिए उदाहरण रूप से, उपाख्यान रूप से और भागवत में चर्चा की गई और बड़े सरल ढंग से उसे समझाया गया।

कि वहां पर चर्चा आती है, सबको कथा मालूम कि उसको जब भगवान श्री कृष्ण ने मांगा तो उसने दिया नहीं, लेकिन उसका फिर क्या रूप हुआ? तो कहने लगे उसी सत्राजित का भाई, और उसको जो है गले में धारण करके और घोड़े पर सवार होकर के और भ्रमण के लिए निकल पड़ा। लेकिन आगे क्या हुआ? तो वहां आप सुनते हो बतलाया गया कि उसके उस भाई को किसी ने मार दिया और मड़ी को लेकर के चला गया। वो मड़ी उसके हाथ से भी निकल गई। फिर जो है आगे जाकर के देखते हैं तो वो उसे किसने मारा, घोड़े को भी मार दिया और उसे भी मार दिया। और आगे जो है फिर कहा कि उस मड़ी को लेके गया सिंह। कौन लेके गया? सिंह। और सिंह उस मड़ी को लेकर के गया, लेकिन जो है फिर आगे क्या बतलाते हैं कि सिंह को भी मार दिया, और फिर उस मड़ी को जो है सिंह को मारने वाला वो ले गया। कहा वो कौन था? तो कहने लगे रीछ भालू, वो ले गया। अब वो उस मड़ी को कहां ले गया? तब क्या बतलाया वहां? कहा गुफा के अंदर ले गया, और गुफा में ले गया, और गुफा में जब गया तो वहां पर उसने उस मड़ी को रखा, और उस मड़ी को रखा तो वहीं पर कौन था? तो कहने लगे बेटी उसकी है जामवती, और वह जामवती जो है उस मड़ी से खेलने लगी, उस मड़ी का आनंद लेने लगी, उसके प्रकाश में कार्य करने लगी, और रीछ जो था वहीं पर है क्या हुआ? कहा सो गया। अब जब ये स्थिति हुई तो सत्राजित ने जो है सोचा कि भगवान ने मड़ी मांगी थी और हमने नहीं दी, तो इसका मतलब है इन्होंने ही हमारे भाई को है करके और मड़ी को ले लिया, तो ये उनको कलंक लगा। और हम लोग भी क्या कहते, जब कोई घटना घटित हो जाती है भगवान ने अच्छा नहीं किया, ये कहते हो, तो दोष किस पर आता? कहा भगवान के ऊपर। हम लोग भी कहते ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी है, ईश्वर ने ही ऐसा किया। पहले तो जब है तब कहते हो हमने किया, और जहां पर हमारी असहायता हो जाती है, हम जहां पर असमर्थ हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहा ईश्वर। इसलिए तुलसी जान ने काल है कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष, मिथ्या शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे ही सत्राजित ने भी किया। अब जब ये भगवान को कलंक लगा तो भगवान ने सोचा किस कलंक को धोना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो गीता भगवान क्या कहते, अपकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, है ना? इसलिए लोकापवाद से भी बचना चाहिए, क्योंकि अपनी जो अपकीर्ति है वो मृत्यु से भी भयंकर। तो भगवान ने उस कलंक को हटाने के लिए क्या किया? कहा अन्य लोगों को भी साथ में लिया और उस मड़ी की खोज की, और खोज की तो आजकल तो साधन है, पहले प्राचीन काल में उतने मार्ग भी अच्छे नहीं थे, ऐसे साधन भी नहीं थे, तो क्या करते थे? जब चोर को उसकी चोरी पकड़ने के लिए खोजते थे तो क्या करते थे? पद चिन्हों को देख करके खोजते थे, उसके पैरों के चिन्हों को देखते जाते थे और फिर खोज करते थे। भगवान भी चल पड़े, कहा घोड़े पर सवार होकर के गया है तो घोड़े के पदचिन्हों को देखते हुए पहुंचे, और पहुंचे तो जिस जंगल में वह गया था तो वहां उस घोड़े को उसने क्या देखा, भगवान ने क्या देखा? अचेत पड़ा, मन मरा हुआ पड़ा, और जो है वो भी मरा हुआ पड़ा, मड़ी वहां नहीं। अब देखा आगे तो आगे सिंह के पैर दिखलाई दिए, और सिंह के पैरों को देखते हुए उन पदचिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो सिंह भी मरा हुआ मिला, और सिंह मरा हुआ मिला तो आगे पदचिन्ह किसके मिले? का भालू के मिले, और उसको खोजते हुए जब गए तो वो भालू कहां तक दिखाई दिया? का गुफा के दरवाजे तक। तो समझ गए कि इसी गुफा में हुआ। अब उस गुफा में प्रवेश करने की अन्य की सामर्थ्य, तो भगवान ने कहा तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं जाता हूं, और भगवान

इसमें प्रवेश कर गए और प्रवेश कर गए, फिर जो घटना हुई वो हुई। लेकिन इसको मूल जिस उद्देश्य से कहा गया, हमारी जागृत अवस्था क्या है, जहां पर हम इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करते हैं। इंद्रियां हमारी चेतन हैं और इंद्रियां संसार के पदार्थों को शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान कर रही हैं। उस अवस्था का नाम क्या है? उसका नाम है जागृत। और इंद्रियों को श्रुति में उपनिषद में क्या कहा? इंद्रियान हयान आहु। इंद्री क्या है? घोड़े। और घोड़ों पर सवार होकर के जाना ये है जागृत अवस्था। वहां तक तो जीव जो है क्रिया करने में अपनी तरफ से समर्थ। लेकिन आगे क्या हुआ? कहने लगे जहां पर घोड़े अचेत हो गए तो जीव भी असमर्थ हो गया और वो भी अचेत हो गया। लेकिन आगे फिर भी श्रृंखला चली तो वो क्या चली? तो कहा सिंह की। और सिंह क्या है? सिंह जंगल का राजा है। सिंह क्या है? जंगल का राजा। और राजा है माने अकेला ही विचरण करता, अकेला ही सामर्थ्यवान है। तो सिंह विचरण करता। और स्वप्न अवस्था क्या है? ये सिंह कौन है? ये हमारा मन ही सिंह है, जो इंद्रियों के घोड़ों के न होने पर भी, जागृत अवस्था न होने पर भी, वहां तो अचेतता है, इंद्रियां नहीं है, उनका अभाव है, लेकिन वहां पर जो है सिंह का उस मड़ी से, मड़ी के सहयोग से विचरण होता और सिंह जो है उस जंगल में उस मड़ी से खेलता है, ये समझ लो। तो जैसे वहां सिंह, वैसे ही हमारा स्वप्न के अंदर उस आत्ममड़ी से क्या करता है? उस आत्ममड़ी को धारण करके यहां तो इंद्रियां भी जो उसको लेकर के जो है व्यवहार वाली होती हैं, लेकिन स्वप्न के अंदर केवल मन ही व्यवहार कर पाता, सारा व्यवहार मन का, मन मनोराज्य होता है। तो वहां पर जो है आत्ममड़ी से काम करने वाला कौन है? मन। और मन ही क्या है? का सिंह है। और फिर उस सिंह को भी अचेत कर दिया गया और उससे मड़ी छीन ली। मड़ी के अभाव में सिंह भी अब जो है अचेत हो जाता। और जब छीन ली गई तो कौन ले गया? का जमवंत, भालू, रीछ। और रीछ जो है उस मड़ी को जब ले गया तो सिंह भी अचेत हो गया, अब स्वप्न का काम भी, जागृत भी गया, स्वप्न भी गया। और क्या हुआ? तो कहने लगे वो ले गया भालू, और भालू कहां ले गया? कहा गुफा में, है ना। इसी को वेद कहता है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। ये वेदांत सिद्धांत है। क्या है? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो इस गुफा के अंदर निहित है। और कैसी गुफा है? परम व्योम रूप। एक तो सामान्य व्योम है आकाश, जिसे भूताकाश कहते हैं, और एक चित्ताकाश भी कहलाता, और जो परम व्योम है वो है चिदाकाश। चिदाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश। तो परम व्योम क्या है? तो परम व्योम है चिदाकाश। उस चिदाकाश और उस गुफा के अंतर्गत, तो अंतःकरण की ही गुफा। अब उस गुफा के अंतर्गत ले जाने वाला कौन है? का भालू। तो सिंह तो मन का प्रतीक हो गया, इंद्रियां घोड़ों का प्रतीक हो गई, ये भालू किसका प्रतीक? ये है अज्ञान का प्रतीक। ये किसका प्रतीक है? अज्ञान का प्रतीक। काले रंग का भी है, तो अज्ञान का प्रतीक भालू। फिर अज्ञान जो है उस मड़ी को ले जाता है, और अज्ञान ले जाता है तो कहां ले जाता है? उस गुफा के अंदर। और उस गुफा में ले जाता है तो उसी का नाम है सुसुप्ति अवस्था। उसका नाम क्या है? सुसुप्ति अवस्था। और उस सुसुप्ति अवस्था में क्या क्या है? तो वहां पर आत्ममणि है, और आत्ममणि का जो सुख है उसको कौन ले रही है? जाम्बती, है ना, माने वृत्ति। जाम्बती कह दो या वृत्ति, आपके इस जीव की ही जो वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है, वह उसका सुख ले रही है। लेकिन सुख तो ले रही है, सुख कैसे ले रही? अज्ञान से पराधीन होकर के।